ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरात, ब्रह्म ज्ञानी का सर्वकार, ब्रह्म ज्ञानी अमरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक और तारे जीवन प्रणाम, सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकर नमस्कारे, नानक हो परस सगुण सारे, अष्टपदी विद्या नाही रसना परस, मन में प्रिय निरंजन दर्श, परते रूप न पेखे नेत्र, सादगी टहल स्थान संगेत, कर न सुने कहु की निंदा, सब से जाने आज को मंदा, गुरपुर साद विख्या पर हरे, मन की बाज न मन से डरे, इंद्री जित पाई दो रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस, भैसण सो जे छू पर सो प्रसन्न, विष्णु की माया से हो भिन्न, कर्म करतो वे ने कर्म, इस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फरकी शनि बाछे, केवल भगत की तन संग्राचे, ममता ने अंतर चमन गोपाल, सब उपर होत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानको वैष्णव परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुत का संग, मनते बिन से सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की माति उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंत्र अर्पे बिसन प्रीत, हर के चरण दे वसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म सोधे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित पे जो न आवे, वेद प्राण समत बुझे मूल, सुख मैं जाने असूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, क्यों वरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गात होए, सत्संग पावे जन कोई, कर कृपा अंतर और तारे, पास्त प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्वरोग का उक्त नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जोत के ते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का नास, तिसका नाम सत राम रास, आत्म राम तिस नगरी आया, दास दस संतन पाए तन पाया, सदा निक निक तार जान, सो दास दर गए प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तेह दास को साफ सो जी परे, सर्वसंग आत्म दास, ऐसी युक्त नान क्राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म पावे, जीवन मुख स्वरूप आवे, तैसा अर्क तैसा उस शोक, सदा नम तय नहीं व्योग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता है साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जज कर राखे तैसा तैनाओ, आपे कर्ण क्रामन जोग, प्रभ पावे सोई फन होग, पसरो आप होयन सतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहार। श्लोक उस सद करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रचि बहुविद अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पैतीर्थवासी, कई कोट मन परमे अंदासी, कई कोट वेद के सोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवता नाम चहावे, नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय उमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेज आत्मन कोर, कई कोट पर दर्प को रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम आये, कई कोट परदेश प्रमाये, जत जत लावो तत तत लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सरप पाए, कई कोट पाथर वृक्ष न पुजाए, कई कोट पवन पणि व संतर, कई कोट देश को मंडल, कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सर छत्र, सगल समग्री अपने सूर धारे, नानक जस जस भावे तिस तस नस्तारे, कई कोट राज स्थान सात, कई कोट वेद प्राण सुमन तार सात, कई कोट कीरतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण पीवे, कई कोट जख के नृपसाच, कई कोट पूत परे सुकर मृगाच, सब ते ने रहे सब ते दूर, नानक आप अलग करया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीवे मरे, कई कोट बोझो नहीं फरे, कई कोट बैर थी खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जय जय पाणा तय तय राखे, नानक सब के जप्रभ के हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लग लागी,
ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਤਮੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪਰਵ ਮਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨਕੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਉਪਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ

आत्मपुरगास कई कोर तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोर नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोर नाम गुन गावे आत्म रसो खुश समावे अपने जन को सास सास मारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण करण प्रभे कहे दूसर नाही कोई नानक सद बलहारणे जल तल मई अल सोई अष्टपदी करण करावन करने योग ज्योतिष पावे सोई योग खिनमय था बो सपन हारा अंत नहीं किस पार आवारा हुक्मे तार तार रहावे हुक्मे उजे हुक समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अंक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सा मैं रह समाई प्रभ पावे मन अवगत पावे प्रभ पावे तं पाथर त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे तं हर गुण पाखे प्रभ पावे तं पत सौधारे आप करे अपन बिचारे दुआ सिरिया कर आप स्वामी खेले बिकसेम कर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे अहो मनुखे क्या हो आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इस कहे हाथों इतना सब कुछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजंत विख्या मैं रचे।

श्री वनवाज व्याकर दृष्ट कछु न आवे ते सत्काल दे दस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताता लेखा न गणे जगदीश जियो पिंड सब तिस की आस कड़कड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बण से आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही एसास कर्ण कराम सर्व कुनाथ आज्ञाकारी बपराजियो ज्योतिष पावे सोई फंतियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोगर करंग नसे कबू नंदचंद व्यवहार कबू ऊब अकाश प्यार कबू बेका ब्रह्म विचार नानक आप मलावणार कबू नृत करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध बिकराल कबू सर्प की उतरवाल कबू होए भय बर राजा कबू है पथारी नीच का साजा कबू आपकी तुम्हें आवे कबू पला पला का आवे यो प्राव रखे तमी रहे गुरपुरसा नाम सच कहे कबू है पंड करे बुख्यान कबू मोहतारी लावे ध्यान कबू तरती स्नान कबू सत्साथ मोह ज्ञान कबू कीर्तन संग होए जिया अंक जौन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रा पावे तिम नचावे ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोई कबू सा संग त्यो पावे उस स्थान ते बो न आवे अंतरो ए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बनास मानता नाम है ते करंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए कटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गौन पाए विश्राम नानक प्रभ के सत प्रवान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आपन मार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज उमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाने मैं जो मनवंत सो होत बेटा का जंत आपको कर मंत कहावे जन्म मरे बहुत जौन परमावे धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता गे सुख पावे तनमंता ए कर गरबावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर्मा नो कुपुर करे आस फल भीतरता का होए बनास सबते आप जाने बलवंत खिनमय होए जय पुषमंत किसे न बदे आप हंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अमान तो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर फिर उतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपको जो भला कहावे किसे भलाई निक न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कौ नानकता की निर्मल

0: सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी हुई जो साध संगत जी स्नेम और फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरां दी परम पवित्र याद विच बैठ के समय ते स्वासां दा आप जी लाह ले रहे गुरमुखां प्यारियां तों आप जी कथा विचार गुरबाणी इतिहास श्रवण कर रहे सी। सतगुरां दी शरण विच आउण दे नाल संसार दा भय मुक जांदा। तीन तरीकियां दे नाल संबंध बनदे ने सतगुरु जी दे नाल, सेवा द्वारा, सत्संग द्वारा, सिमरन दे द्वारा। धर्म मनुख दा एक भी होवे फिर भी कई वारी संबंध बनते नहीं। देश भी एक होवे फिर भी कई वारी संबंध नहीं बनते। देखिया जीवन में मुसलमान मुसलमान नाल लड़ी जाता, सिख कई वारी देखी दा सिख नाल लड़ी जाता। कदे आप जी इतिहास से नज़र मारो, इंग्लैंड भी क्रिश्चन सी ते जर्मन भी क्रिश्चन सी। बड़ा भयानक युद्ध होया, हैरानी है धर्म भी एक है, पता क्यों नहीं संबंध बनते? क्योंकि प्रेम कोई संबंध बन ली प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: कई बारी भरावां भरावां का खून एक हुंदा फिर भी संबंध नहीं बनता क्योंकि प्रेम नहीं। इत्थे जिथे असी बैठे हाँ इत्थे भी कोई शर्त है वे प्रेम है। सतगुरां नूं कहना पे

दुनिया मुद्दे कूड़ पसंद है मेरे दिसे जब इस दुनिया मुद्दे कूड़ पसंद है मेरे दिसे अंबर उत्ते छाया तुम गुमार अंधेर दिसे अंबर उत्ते छाया तुम गुमार अंधेर दिसे सूरज दा बल रूप आकाश कहां आउंदे ने संत रूप भगवान जगत में उतारने आउंदे ने संत रूप भगवान।

0: देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, रोक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, करो कतल जला देवे करो कतल जला देवे ऐने झूठ बोल दी माई, करो कतल जला देवे ऐने झूठ बोल दी माई, रोक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, रोक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, करो कतल जला देवे ऐने झूठ बोल दी माई, करो कतल जला देवे ऐने झूठ बोल दी माई।
1: मन च पूर्ण विश्वास होवे, जिन्ना दे मन विच पूर्ण विश्वास होवे, असी ओ रुखसार हुंदे आ। मेरी मां झूठ बोलदी है, असी सरदार हुंदे आ। मेरी मां झूठ बोलदी है, असी सरदार।

बछड़ा विधवा दा कुछ ते कर लो रहम जला दो यह बछड़ा विधवा दा कुछ ते कर लो रहम जला दो तक लाशा तड़फ दिना गईए धरती सहम जला दो तक लाशा तड़फ दिना गईए धरती सहम जला दो कि करूं खुदाई रोक जाओ जला दो वे चिट्ठी लै दर बार आई रोक जाओ जला दो वे चिट्ठी लै दर बार आई मैनू कतल करो छेती मेरी मंजिल दूर टिकाणा मेरे साथी उड़ीक रहे मेरी कोल उना दे जाणा मेरे साथी उड़ीक रहे मेरी कोल उना दे जाणा जो मेरे भाई करो कतल जला दो वे ऐवें झूठ बोलदी माई करो कतल जला दो वे ऐवें झूठ बोलदी माई करो कतल जला दो वे

तेरी अमर सिखी नू मेरे सतगुरु दियो तेरी अमर सिखी नू मेरे सतगुरु दी अपने सिर दे नाल निभा देंगे धन तौलत जवानी ते दात अपनी लेके दसते सब कुछ ला देंगे लेके दसते सब कुछ लगा देंगे असि हिंदू रही सिख नहीं पुत मेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा मैं गल समझ आई रुक जाओ जना देवे चिट्ठी लै दरबार आई रुक जाओ जना

0: ਮੁਕਤ ਸੋਚੀ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਿੰਚ ਗਲਜੀ ਤਰਦਾ ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀਵੇ ਅਮਰ ਕਹਾਵਾਂ ਸਿੰਚ ਗਲਜੀ ਤਰਦਾ ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰ ਕਹਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਕਰੋ ਕਤਲ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਐ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮਾਈ ਕਰੋ ਕਤਲ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਐ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮਾਈ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਕਰੋ ਕਤਲ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਐ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮਾਈ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਕਰੋ ਕਤਲ ਜਲਾ ਦੋਵੇ ਐ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮਾਈ
1: शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद सिखी की शमा है परवानिया ने इस कई बार अपना आपा फना किया करते रहेंगे इन्हों ही विचारों समाप्ति उन्होंने महान शहीदों को श्रद्धांजलि के फुल भेट कर रहे सर महापुरखों के चरणों में हाजिरी दवा रहे सर बहुत बहुत धन्यवाद समुची साध संगत का ढाडी अथा एयरपोर्ट फोर्ड विखे लगातार सेवा निभा रहा है गाहे बगाहे समा कढ के प्रबंधकों के हुक्म उत्ते फुल चढ़ाया होया इतने भी कैंट संगत ने जोड़े झा रहे हैं उम्मीद है टुटी फुटी सेवा प्रवान करोगे सारी संगत का धन्यवाद बाबा जी तो अगला प्रोग्राम सरण करो ढाडी अथे रिकॉर्ड हुई कैसटा सी डी साढ़े को मौजूद हैं किसी भी उन्हें लोड़ हो स्टेज के बाद साढ़े न संपर्क करके तुम प्राप्त कर सकते हो बुलाओ प्यार सा फते गज के आखो जी वाहगुरु जी का खालसा
2: वाहगुरु जी की फतेह महाराज जी के दरबार अंदर जुड़ बैठे परम सत्कार जो गुरु सतसंगत जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह सारिया ही सिख संगत
3: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउन लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे
4: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075
5: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singhsabha2@gmail.com एक बार फिर नोट करो जी singhsabha2@gmail.com
6: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

नानक माग महारस हर जप अठसठ तीरथ नाता। तुखारी राग दे बारह माह दे राही माग दे महीने दा धन गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश संदेश। माग पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। माग दा महीना साडे लई अत्यंत पुनीत साबित होया। किस्ता किसे तीरथ ते स्नान कीता, किसे विशेष तीरथ ते जाना नसीब होया। साहिब कहिंदे हां तीरथ अंतर जाने, अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई और उत्थे स्नान कीता। ए अंतरीव तीरथ की है, इसका गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बड़ा जिक्र है।

अब किन मस्तक दे ध्यान जोड़ के प्रभु दा चिंतन कीता है, प्रभु दे नाम दा अलाप कीता है, जाप कीता है, मन ऐसा लीन होया है मानो घर बैठे ही त्रिवेणी दा इशनान हो गया, प्रयागराज दा इशनान हो गया। इसी तरीके नाल अंतरीव तीरथ दा जपजी साहब दी पंक्ति दे राहीं गुरु नानक देव जी महाराज इन जिक्र करदे ने, गावीए सुनिए मन रखिए भाव, और फिर दूसरी पंक्ति सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाओ। ए अंतरीव तीरथ है परमात्मा दे नाम नु सुनना मनना, सुनिए मनिए मन कीता भाव ते मन दे भावनावां नु उजागर करना, श्रद्धा नु उजागर करना, और श्रद्धा विच लीन हो के सुनना मनना ते फिर गायन करना, बस यही अंतरीव तीरथ है। इसते ही मन पावन हो जाता है, जन्मा जन्मांतरां दे पापा दी मैल इस तीरथ ते इशनान करके धुल जाती है। तो साहब इत्थे फरमान पे करदे ने, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया। माघ दा महीना साडे लई पुनीत हो गया, पावन हो गया, क्योंकि अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई। जद मन अंतर है तो फिर तीरथ भी अंतर ही चाहिए। कबीर ने उसका जिक्र इंज कीता है, गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहां कबीरे मठ किया खोजत मुनि जन बाट। गंग जमन के अंतरे, जो परमात्मा दा नाम मैं गायन कर रहा, ए गंगा है। जो इसनु मैं सुन रहा, इस विच ध्यान जोड़ रहा, ए जमना है। और इस संगम दते एक घाट है सहज दा, और इत्थे एक होर घाट है सुन दा अफुर अवस्था दा। इस देश में इशनान कर रहे हैं, गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट, तहां कबीरे मठ किया खोजत मुनिजन बाट। आदि काल तो मुनिजन ऋषि लोग संत जन इसी तीरथ नु लभदे फिरदे ने। कबीर कहंदे ने, मैं इस तीरथ तक पहुंच गया, मैं इस तीरथ ते इशनान करके पावन हो गया। तो साहब कहंदे ने, माघ दा महीना पुनीत हो गया, अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई है, और अंतरीव तीरथ दे इशनान ने जन्मा जन्मांतरां दे पापां दी मैल नु धो दिता है। साजन सहज मिले गुण कै अंक समानिया। जैसे अंतरीव तीरथ ते इशनान कीता पावन होए, सहज अवस्था अंदरों उत्पन्न हुई। सहज दा मतलब है स्वयं तो जन्मिया, जो अपने आप तो पैदा होया है। इस तरह सहज अवस्था दी प्राप्ति हो गई, इदे चों साजन पैदा होए, परिपूर्ण परमात्मा प्रगट होए, और उसने कंठ ला लिया, ओ अंगा दे नाल आके समाए, जोड़ जुड़ गया साडा परिपूर्ण परमात्मा दे नाल। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा। हुण शायद इंज उपदेश करदे ने, जिज्ञासु नूं समझांदे ने, तू इंज जोदड़ी भी कर ते इस भाव नूं भी समझ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू गुणा नाल ओत प्रोत, तू गुणवान है। हे गुणा दे महान सागर, हे अत्यंत सुंदर, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके तुद भावा सरनावा। जे मैं तेनू पा जावा, यही तीरथ दा इशनान है, यही सरोवर दा इशनान है। जे तेनू पावा ही ना, तो फिर इशनान किए तीरथ नावा, जे तिस भावा विण भाणे कह ना करी। यही तीरथ दा इशनान है, जे तेनू पा जाइए ते उसनू भा जाइए, तो समझ लो प्रवान हो गए, सारी मैल कटी गई। फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक होर सुंदर वाक, आप कहंदे ने, तीरथ नावण जाओ

तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पूर्व सदा दसाहरा, और नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। साहब फरमान कर देने, जरूर तू तीर्था ते स्नान करन ले जा, पर तीर्थ केड़ा है? तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, परमात्मा दा नाम ही ते तीर्थ है। और ए तीर्थ हर थां ते है, हर वक्त मुयस्कर है, बस सिर्फ तेरी रचना चलनी चाहिए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ऐसा जाप चलना चाहिए। रचना बोले ते कन सुन, तीर्थ दा स्नान चल पिया। तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु दा जो शब्द है, उस शब्द दी जो विचार है, उनु जिड़ा विचारना है, सोचना है, अपने सोच मंडल दे जो लेना है, बस यही तीर्थ दा स्नान है। तो साहब इत्थे फरमान कर देने, हे परिपूर्ण परमात्मा, हे गुणा नाल ओत प्रोत समाये हुए गुणा ने, हे सुंदर स्वरूप, जे मैं तेनु पा जावा ताई जो है तीरथ दा स्नान है। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद भावा करनावा, गंग जमनते दैनी संगम, सात समुंद समावा। जे किधरे तेनु मैं पा जावा, ते ए गंगा जमना ते त्रिवेणी दे संगम दा स्नान हो गया। मानो सत्तां समुंदरां दा मैं स्नान कर लिया, सारी पवित्रता मेनू जो है प्राप्त हो गई। जे किधरे मैं तेनु पा जावा, ते भाण दा तरीका इक्को ही सतगुरां ने दस्या है, तीरथ अंतर जाने। अंतरी तीरथ दा स्नान बड़ा जो है लाजमी है। विवेक बुद्धि वाले अमृत वेले उठ के बस इसे ही अंतरी तीरथ ते रोज स्नान करदे ने, और जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां दी मैल नूं धोंदे रहिंदे ने, धोंदे रहिंदे ने। एक दिन स्वच्छ पावन ते परमात्मा दी मूर्ति हो जांदे ने। वास्तविक ऐसा पुरुष जिथे भी बैठा है, उसके बैठण दे नाल ही तीरथ जन्म लैंदे ने। भगत पीपा जी का एक बड़ा सुंदर वाक, कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। आप कहते ने, काया ही मंदिर बन गई है, काया ही तीर्थ बन गई है, और काया देचो ही मैं नवनिध नाम दी प्राप्ति कर लिए। काया बहुखंड खोजते नवनिध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो, राम की दुहाई। ये महान सौगात इस काया दे अंदरों जो है मैं प्राप्त कर ली। उस अंतरीव तीर्थ नु जान के इतनी वड्डी बरकत प्राप्त हो गई। भाई साहब भाई गुरुदास जी दी एक बड़ी कीमती पौड़ी है, आपदा फरमान, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। ऐसा मिथ्यास है कि गंगा ए ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, शंकर दे मस्तक दा जल है, विष्णु दे चरणा दा जल है। अपने करमंडल चो कढ के ए जल विष्णु दे चरणा ते डोलिया ब्रह्मे ने, फिर ए शंकर ने अपने मस्तक दे सहारिया, ते इस तरह ए संसार विच आई। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते जो 999 नदियां 12 मास दरिया वगण वाले ने, भाई साहब कहें गंगा इन्हां दे चों सरमौर है, महान है। क्यों कि 68 तीरथ इस दे ही कंडे ते बने हुए ने। कहे लोग ही परवान है, महादेव ले शीश चढ़ाई, फिर शंकर ने इसनों अपने मस्तक दे थां दिती है। भाई साहब अखीर दे कहने ने, सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवलाई, साधु दूर न पुजने साध संगत सतगुर शरणाई। लखां ही ब्रह्मे दे करमंडल दा जल होए, लखां ही विष्णु दे चरणा दा जल होए, ते लखां ही शंकर दे मस्तक दा जो है जल होए,
सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ लाख लेवलाई साधु धूर ना पुजने साध संगत सतगुरु शरणाई। साधुआं दी संगत दिच बैठ के जो अपनी सुरत शब्द दे जोड़ के मगन है उसके कदमा तो करोड़ा गंगा निछावर कीतियां जा सकदियां ने, कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने। उसके चरणा की खाक इतनी पावन है, इतनी महान है। तो अंतरीव तीरथ का ही जिक्र गुरु अर्जन देव जी कर देन और अंतरीव तीरथ का ही जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज कर देने। पुन्न दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, जो जुगा जुगांतरा दे इको परिपूर्ण परमात्मा रमे होया उनू जेड़ा असी जान लिया मानो सारे पुन कर ले, सारा दान कर छड़िया और सारी पूजा प्रतिष्ठा परिपूर्ण परमात्मा दी हो गई। परमात्मा नू जानना ही सब तो वड्डा पुन है, परमात्मा नू जान लेना ही सब तो वड्डा दान है। कारण जद कोई जान लेंदा है तो उसके अंदर एक प्यास पैदा हो जाती है दूजे भी जानना, और वो ऐसी कोशिश करता है वंडन नू चल पैंदा है, दूजिया नू ज्ञान वंडदा है और दूजिया नू दसदा है प्रभु की इंज प्राप्ति होवेगी और प्रभु ऐसे नहीं। तो पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, ओ जुगा जुगा विच जो एक रमिया होया उसनू जिहड़ा असी जान लिया मानो सारे पुन कर ले, सारी पूजा कर ली, हर तरह का दान असी दे दिता। नानक माघ महारस हर जप अड़सठ तीरथ नाथा, क्योंकि माघ दे महीने का इशनान ते दान काफी महान मनिया गया। साहिब कहिंदे ने ज्ञान दे दान तो वड्डा कोई दान नहीं, ते परमात्मा नू जान लेना इस तो वड्डा जो है कोई ज्ञान नहीं। और जिस दे कोल एक ज्ञान है ते ज्ञान दा दान है मानो उसने सारे पुन कर ले। नानक माघ महारस हर जप अड़सठ तीरथ नाथा, माघ दे महीने विच परमात्मा दा नाम जप जप के जो महारस की प्राप्ति हो गई मानो अठाठ तीर्थां दा इशनान हो गया, इस तरह माघ पुनीत हो गई, महान हो गई। फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए।

भारत दे जो चल रहा है साल बिकमी सम्मत उसका ए आखरी महीना फगन फलगुण फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए गुणा दा फल गुणा दा फल है सज्जन दा मिला फलगुण फगन फलगुण फलगुण दे महीने दा उपदेश माजराज दी महान रचना बारह माह दी बाणी राही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करदे ने फगन दे महीने दे सज्जन हिरदे दे आन प्रगट होए ने आनंद बन गया आनंद दी वर्षा हो गई है। ए मिलाप किवें होया ए सज्जन किवें प्रगट होए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिला राम नू मिलाने दे जड़े मददगार ने संत लोग सहायक ने बस उन्होंने बख्शिश की थी उन्होंने रहमत की थी उन्होंने मिला दिता क्योंकि उन्हां दी संगत विच राम याद आ गया उन्हां दे कोल बैठ के ईश्वर याद आ गया। इस वास्ते भगत कबीर ते साथ कहंदे ने कबीर सेवा को दोनों भले एक संत एक राम राम जो दाता मुकुट का संत जपावे ना। ये ठीक है कि मुक्ति परमात्मा दे हाथ च है और किसे ने भी नहीं देनी दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे पर दाते दे हथां तक पहुंच सकी है दाते दी दात प्राप्त कर सकी है उसी सिख तो सलाह कर सकी है उसनो जान सकी है संत मददगार ने प्रथम मनुख दी कोशिश होवे सत्संग तक पहुंचना गुरु तक पहुंचना फिर गुरु दा ए कम है अभ्यासी नो साधक नो राम तक पहुंचा देना परमात्मा तक पहुंचा देना। तो संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुन दुखा नाही जाए हिरदे दी सेजा हुन सुखा नाल भर गई है सुहावनी हो गई है हुन दुखा लई कोई था नहीं रही। दरअसल मनुख तन करके ते इतना पीड़ित नहीं है सारी दुनिया दे जितना मन करके पीड़ित है तन दे तल ते इतने रोग नहीं जितने मानसिक रोग ने ये तन करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है। तो हृदय दी सेजा दते साहिब कहंदे ने सुख ही सुख प्रगट हो गए इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही कोई ठिकाना नहीं रहा नस वन्यो किल विखो करता घर आया ऐ पाप ऐ दुखो नस जाओ भज जाओ। हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे आनंद दे दाते आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आण विराजे ने उदे गुणा दा वास्ता हो गया हुण तुसी रुखसत होवो हुण थोड़े लई कोई थां नहीं हुण थोड़े लई कोई ठिकाना नहीं। इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय साहिब इत्थे फरमान करदे ने वड़ियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई। दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णती है। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा जैसे उस अगम दी प्राप्ति होंदी है परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है मानो सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई सारे सुख प्राप्त हो गए। तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करदे ने सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई वड्डियां भागां वाली ए जीव इस्त्री इसनूं वर दी प्राप्ति हो गई हरी राय दी प्राप्ति हो गई मिल सईयां मंगल गावई गीत गोविंद अलालाई। ए जीव रूपी इस्त्री हुण साध रूपी सहेलियां विच बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है ईश्वर दी धुन अलाप रही है इस तरह हर वक्त ईश्वरमई माहौल बनया होया है ईश्वरमई वातावरण बनया होया है। हर जेहा अवर न दिसई
कोई दूजा लवे ना लाए। संगत दिस गीत गांदियां गांदियां एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं, क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने, सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलत सवारियां नहीं चल दितियां जा। शायद किन्हें उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता, तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार दे तल ते सहूलतां पैदा हो गई, और आत्मक तल ते रूहानी आनंदी जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक इस तरीके नाल जो है सवर गए। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान, ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला होवे, ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे, तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जाता है, मन भी सुखी हो जाता है। साहिब कहिंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाय। संसार दे ये जो चक्कर दी तरह बार बार आवना सी जावना सी आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लमे। ये जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई थी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर दिचों कट दिता है, इस सागर तो पार कर दिता है। मुड़ के जन्मा दी धावना नहीं, जन्मा दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तरे नानिक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने, पर तेरे गुणा दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कुल रसना सिर्फ एको ही है। इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आंकने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है। कहिंदे ने जद रसना गांदियां गांदियां रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होंदा है, होर गावां होर गावां होर गुणा दा उचारण करां। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच एक ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ां जबाना मेरे कोल होंदियां कि प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ां मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ां कन्ना नाल उसदी उस्तुति सुनदा। कोट करण दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अवनासी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा होंदी है, हे प्रभु अनंत गुणा दा तू मालिक है, पर तेरे गुणा नू गायन कर सका मेरे कोल केवल एको ही रचना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणा नू मैं किवें गावां, किवें प्रगट करा। फिर भी साहिब कहिंदे ने एक रचना नाल गांदियां गांदियां चित तेरे चरणां च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनू दिल ना तवाए। फलगुण दे महीने दा उपदेश साहिब कर देने, उसकी सिख तो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखदा, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करदा, उसकी सिख तो सलाह करो, उसते गीत गायन करो, झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जताण दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिहड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फगण दे महीने विच उसकी सिख तो सलाह करा, तो फिर इस सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। बारहवां इत्थे समाप्त होया ते बारहवां दा उपसंहार वास्तविक तत् निचोड़ इस शब्द विच अखीरले शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करदे ने, जिन जिन नाम दे आया तिनके काज करे। जिस जिसने भी परमात्मा दा नाम आराधन कीता, उस विच ध्यान जोड़िया, उन्हां दे कम सिरे चढ़े। दरअसल
मुख गल परमात्मा दी है, ना किसी ग्रह दी, ना किसी नक्षत्र दी, ना किसी जो है उपग्रह दी। आदकाल तो ऐसा ख्याल चले आ रहा है, इस ग्रह दी पूजा, उस ग्रह दी पूजा, ये ग्रह चंगा है, वो ग्रह माड़ा है, इसका चंगा असर है, उसका माड़ा असर है। साहिबकन ने ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा तो है, सब कुछ ईश्वर तो है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा का नाम जपया, उन्हां दे कारज सिरे चढ़े और उन्हां नूं अध्यात्मक आनंद की प्राप्ति हुई। हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच खरे, जिन्हां ने पूरन गुरु की आराधना की थी, वो दरगाह दे खरे खड़े हो गए, भाव सुच्चे साबित होए, उन्हां दे कोई खोट नहीं सी, उन्हां दे कोई इल्जाम आयद ना होया। सर्व सुखाने दे चरण हर भव जल विखम तरे, परमात्मा दे जड़े चरण ने वो सारे सुखां दे देण वाले ने, और जो उन्हां चरणां दा आसरा जो है पकड़ लैंदा है, वो भव जल तो पार हो जांदा है, संसार तो पार हो जांदा है, जबकि वो भव जल अति विखम है, अति औखा है पार करना, पर प्रभु दे चरण ऐसे महान ने, उन्हां दे आसरे दे नाल मनुख पार हो जांदा है। प्रेम भगत तिन पाईया विखिया नाहे जरे, ऐसे जिहड़े साधक ने जो हरि दा नाम जपदे ने, उन्हां नूं प्रेमा भगती दी प्राप्ति हो जांदी है। अनेकां भगतियां विद्वानां ने मनियां ने, जिस विच प्रेमा भगती सिरमौर है, महान है, अति उत्तम है, सिरमौर है। जिन्हां नूं भी प्रेमा भगती दी प्राप्ति हो गई, विखिया नाहे जरे, वो फिर मुड़ के विकारां दी जहर दे नाल जलदे नहीं, विकार उन्हां नूं जलांदे नहीं, विकार उन्हां दे अध्यात्मक गुणां नूं नाश नहीं करदे। प्रेम दा हिलोरा उन्हां च ऐसा पैदा हुंदा है, विकार कोसों दूर हो जांदे ने, ना उन्हां दी कल्पना, ना उन्हां दी सोचनी। विकारां दा आके बैठना ते इक पासे, विकारां बारे हुण कदी सोच भी नहीं फुरदी। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे, हिरदे दे पूर्ण तौर ते भर गया है सच, कूड़ झूठ नाश हो गया है, दुबदा मिट गई है। दो पासे दी धावना, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी श्रद्धा कदी विपरीत, कदी प्रेम कदी घृणा, कदी ज्ञान कदी अज्ञान, ते कदी दान ते कदी कठोरता। इस तरह की जिहड़ी दुबदा सी, उह सारी दी सारी नाश हो गई, क्योंकि हिरदा सच नाल भर गया, कूड़ चला गया, और इस तरीके दे नाल पूर्णता नसीब हो गई। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक धरे, ऐसे अभ्यासी हर वक्त अपने अंतर आत्मे विच उस एक दा चिंतन करदे ने, ते पार ब्रह्म दी इसे नाम जप द्वारा सेवा करदे रहंदे ने। आखरी उपदेश इस 12 माह दा, महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, जिस दे ते परिपूर्ण परमात्मा दी बख्शिश हो गई, ते जो नाम जपन लगते है, ते 12 दे 12 महीने भले ने, महान ने, कोई रुत भैड़ी नहीं, कोई दिन भैड़ा नहीं, कोई महीना भैड़ा नहीं, महादिवस मूरत भले, सारे महीने भले ने, सारे दिन चंगे ने, और हर मुहूर्त चंगा है, पावन है। ऐसा ख्याल है, मुहूर्त कटाओ, इस कम दा उस कम दा लगन सुधाओ। साहिबकन ने अगर कोई दिन माड़ा है, तो दिन बढ़ाया किसने, परमात्मा ने, तो वो कितों चंगा हो सकता है। जो दिन माड़ा बनांदा है, अक्सर माड़िया चीजा माड़िया तो ही बनदिया ने। जिसने महीना बहड़ा बनाया है, वो आप कितने चंगा होगा, जिसने दिन बहड़ा बनाया है, वो आप कितने चंगा होगा, जिसने ग्रह ते नक्षत्र भेड़े बनाए ने, ते उन्हां दा असर माड़ा है, वो आप कितने चंगा होगा। बहुत गहरी सोचनी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिती है, वो आप चंगा है, उस तो सारिया ही चंगियाईया दा जन्म होया, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते, कुछ भी बुरा नहीं। हां मनुख दे जद कर्म अशुभ हो जांदे ने, अशुद्ध हो जांदे ने, और अंदर बुराई उजागर हो जांदी है, तो चारों पासे उसनु ऐसा दिखाई देंदा है, वो अपनी बुराई दी आप जिम्मेवारी नहीं लेंदा, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, फलाना बुरा है, ते उसने बुरे करके
میں برا ہو گیا، اس دی برائی کر کے میں دکھت ہو گیا، تو یہ الزام کئی دفعہ منکھاں تے تھوپیا جاندا ہے، کئی دفعہ گرہ نچھتریاں تے تھوپیا جاندا ہے، مہینیاں تے تھوپیا جاندا ہے، دن تے تھوپیا جاندا ہے، یہ دن نہیں ٹھیک۔ تو صاحب کہنے نہیں، مہا دیوس مورت بھلے جس کو نظر کرے، جنہاں دے تے پرماتما دی نظر ہو گئی تے جو نام جپن لگ پے، سارے مہینے انہاں لئی شوبنیک نے، سارے دن انہاں لئی مہان نے۔ نانک منگے درس دان کرپا کرو ہرے، اے پری پورن پرماتما نانک ایک دان تیتھو منگدا ہے، تو بخشش کر، کرپا کر، میری جھولی دے اپنے درشنا دا دان پا، اپنے درشن دی بھکشا پا۔ بارہ ماہ ماج راگ دا گرو ارجن دیو جی مہاراج اس ارداس اس پرارتھنا نال سماپت کر دینے۔ فلگن

गुरुमुख अंतर राव रहा, बक्षे भगत पंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत करे, जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख करो। मन तन शांत शरीर, बिन जल कड़ी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत करे, जैसी चात्रिक में हो। सर पर फल हरियावले, एक बूंद ना पवे के है। कर्म मिले सो पाई है, किस पया सिर दे है। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत करे, जैसी जल दुध होए। आवतन आपे खवे, दुध को खपन ना दे। आपे मेल विछुनिया, सच वडियाई दे। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत करे, जैसी चकवी सूर। तीन पल नींद ना सोवई, जाने दूर हजूर। मनमुख सो जी ना पवे, गुरमुख सदा हजूर। मनमुख गणत गणावनी, करता करे सोए। ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए। गुरमत होए तपाइए, सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर पेते।

से पंखनों जो चुग दे सर तल कड़ी के मोहत के चलना फेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा फिर मल बिन गुर प्रीत ना उपजे हमें मैल ना जाए सो हम आप पछाणिए सब दे तेज पति आए गुरमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मिलिए सबद मिले पति आए मन मत सो जीना पवे विचर चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए श्री राज महला पहला मन मत फुले फुलाइए फूली थौर न काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली जो हागनी ना फिर अंक समाए रहाओ पुली फिर दिसंतरी पुली द्रोह तज जाए पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाए तुरो विछनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिजलाए विछड़िया गुर मेल की हर रस नाम प्यार साच सहज शोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अक्षर पढ़ पढ़ पुली है पेखी बहुत अभिमान तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरु बिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरुमुख तत विचार सातन आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही तो फिर पाया गुर कै हेत अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हों मैं विच्चों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना ले आ जाए गुर की चरणी लग रहो विच्चों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सच्चो पल्ले पाए पुलन अंदर सब को अकुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा किसे प्यार नानक साच न विसरे मेले शब्द अपार श्री राज महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुख बंधव कर नार तन जोगन जग ठगया लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हो मुई सावरत संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग त्यों गुर के शब्द संतोख जो जिसे सो चलसी कूड़ा मोह न वेख वात बताणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वदाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा न कोए गुर शरणाई छुटिए मन खोट निराश अष्टात पाप सा की करिए शब्द विदास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब दुखी थोक बजाए कहने हाथ न लबई सच चुके पत पाए गुरमत तू सालाना होर कीमत कहन न जाए जित तन नाम न पावई तित तन हो मैं वाद गुर बिन ज्ञान न पाई है दिख्या दूजा साध बिन गुण काम न आवई माया पीता साध आशा अंदर जमिया आशा रस खाए आशा बंद चलाई है मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे थाई एक तू ज्यों पावे त्यों राख गुरमत साचा मन वसै

सार सब सुरख सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार ज्यों पावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साची खसम रजाए जिन तन मन साज सिगारिया तिस खेती लिवलाए रहाओ तन बैसंतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए तन है मंचल डालिए ती मन के रोग न जाए हर नाम में तुल न पुजई सब दुखी ठोक बजाए कंचन के कोट डट करी बहु

बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सचो और है सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आती है नीच ना दिसे कोई इतने पांडे साजे है इक चानन से हो लोए कर्म मिले सच पाये थोर भक्त ना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकथ तथा विचारी है जे सतगुर माहि समाए ई अमृत संतोखिया दरगे पैदा जाए कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसे तौल हर बगे बंक द्वार कर मन सुखी उतारिया दूजे हेत प्यार अंदर खाली प्रेम बिन कह तेरी तनचार पाई रे तन तन साफ ना होए राम नाम तन निर्मल हो गुरदास करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मल हो जे देव है देवन हार आगे पूछ ना हो वही जिस बेली गुर करतार आप छदाए छुटी है आपके बक्षण हार मन मुख जाने अपने तिया पूछ संजोग नारी देख विगासी है नाले हर तो सोग गुरमुख शब्द रंगावले एनिस हर रस होग चित चले वित जावनो साकत डोल डोलाए बाहर ढूंढ भी गुची है कर्म है वक्त सोथाए मन मुख हो मैं कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आर्या अपना मूल पछाण रकत बिंद का एतनो अग्नि पास पिराण पवने के वस देहुरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोए सुख जीवन किस आसी है जिस गुरमुख वस्या सोए नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस्फुली है जब लग निद्रा होए क्यों सरपन के वस जीड़ा अंतर हो मैं डोए गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोए अग्न मरे जल पाई है जो बारिक दूजे माए बिन जल कमल सो नाती है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए श्री राग महला पहला डूंगर देख डरावनो पेई अड़े दरियास ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास पाई रे पाव जल बिखम डराओ पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाव रहाओ चला चला जे करी जाना चलन हार जो आया तो चलसी अमर सो गुर करतार ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लक्कर लख अपार किसी नाल न चलिया खप खप मोए असार सोना रूपा संचिय माल जाल जंजाल सब जग में दो ही तेरी है बिन नामे सिरताल पिंड पड़े जियो खेलसी बद फैली क्या हाल कुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार केवा चंदन लाई है कापड़ रूप सिगार केहू फेर लाई है छोड़ चले कर बार मेहर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है।

अगमाही सब जग काजल कोठड़ी तन मन देह सुआहे गुरु राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाहो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख तरे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैस

कर सिदक करनी खर्च बांधो लाग रहो नामे रहाओ जोगी ता आसन कर बह मुल्ला बह मुकाम पंडित वखाने पोथियां सिद्ध बह देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार दर पूछ

रव चले निस सस चले तारिका लख पलोए मुकाम ओही एक है नानका सच बुगोए मुकाम ओही एक है नानका सच बुगोए महले पहले सतारे।

प्राण पात चित क्या सगल में है मरना रहो चंदन चुआ रस भुग करत अनेके बिछया विकार देख सगल है पीके के गोविंद को नाम लिखे कहत है साध जन तन तन अपन थप्यो हर जप ना निमक जाप्यो अर्थ दरो देख कश संग नाही चरण चलना जा को रे कर्म भला तेन ओट गही संत फला सिन नाही जे रे जम संचावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अपमान एक ओंकार नानक मन लगना है एक ओंकार सभी मेला पंजवा कार सतवा हर एक सुमर एक सुमर एक सुमर प्यारे काल कलेश लोभ हो महापाव चल सारे हाओ सा सास निमख निमख दिन सरण के तारे सा संग जबने संग मन दान तारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे सा जना की रिंग नानक मंगल सुरूप सुधारे नमस्कार अठवां जोप दे सिमर सिमर सिमर सुख पामु सा सा संभाले ये लोक पर लोक संग सहाई जत कत मुहे रखवाले गुर का वचन वसे जी नाले जल नहीं डूबे तत्कर नहीं लेवे पाए न सके जाले पाए न साके जाले रहा निरतन को तन अंबले को टिक मातूद जैसे वाले सागर में बहुत पायो हर नानक करी कृपा करो वाले सांसवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत दिसाई नाम निज दिसद हर लग रही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गै बाहर ठाकुर पंचार रव रहा जाओ सर्व ठाई रहो ता को कोई ना पहुंचन हारा जा कह अंग सुधराई जमकी ता समझ जिसने सिमरत नानक नाम त्याई ता सिमरत पंजवा गर्भवंत दर देख गर्वे भूमवंत अवमनी राजा जाने सगल राज हमारा त्यों हर जन टेक स्वामी जे को अपनी और समारे जैसा वित्त पैसा होए वर्ते अपना वल नहीं हारे भाव आन त्याग पैक असर सर फरण कर आए शांत अनग्रह पै मन निर्मल नानक हर गुण गाए तरह सी मला पंजा जहाँ को हर रंग लागो इस युग में शोक युत है सूरा आत्म विनय सकल वस्ता कह जहाँ कह सतु जहाँ का सतगुर पूरा ढाक गाइए आत्म रंग सरने पाओ नाम से अवन सह सुना भन संग रहो जन के जन वसें ही रे संग पनीता दे जन की तुर दे कृपा निध नान कह सुख ही तनासी मेरा पंजा जगत करे मानुख डहकावे ओह अंतर जम जाने आप करे कर्म करवावे ते करे निर्वाण।

0: मजाहु रत्या विद्रोह सच शोक नानक मिठड़ा सो तनी पौड़ी। हर दिन कठिन लागी है पुत्र क्यों मीठा, आन स्वाद सब सिक्षा कर निर्णय बीठा। ज्ञान परम दुख का त्या गुर पहे बसीठा, चरण कमल मन वेद चरण कमल मन वेदया जीव रंग मजीठा। जीव प्राण तन मन सब दिन से सब झूठा, श्लोक तैकत जल मह जीव मीन नह त्याग चात्रिक मेद मंडलोह बान बेधंस कुरंख नांद अल बंधन कुसन वासन हो। चरण कमल रचिंत संतो नानक आनना रूप से, मुख देखाय मुख देखायो पलक जठ जठ आनना देहो चीत जीवन संगम तनि हर नानक संता मित। कौड़ी जीव मछले बिन पान पानी में क्यों जीवन पावे, बूंद बिहुना चात्र को क्यों कर पावे। नाथ को बेदया मनुष्य उठ पावे पावे पावे पर पवर लोभ लोभी कुसुम बात का मिल आप बंदावे। क्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस खावे, श्लोक चितवंत चरण कमल सास सास आराधनो न विस्मृत नाम सत नानक आस पूरन परमेश्वर। सीतला मन मांझियो पलक न किवे बहारा, नानक आसली निभाए सदा पे कंधे सतनी। पौड़ी आशा मंत्री आस बचाई पूरिये, मिन गोपाल गोविंद ना कभी चूरिये। देह दरस मन चाहो लाहे ज्यो विसूरिये, होए पवित्र शरीर चरना तूरिये। पार ब्रह्म दुर्देव सदा हजूरिये, सलोक रचना चिंत नाम सुरन सुनंत सबद अमृत हो। नानक तिन सद बलिहार, जिन्ना तिहान पार ब्रह्म ने। हब कुरहावे कम इक चाही बहारे, नानक सेई तन जिना फिर हरे सच सियो। पौड़ी सद बलिहारी चिन्ना जी सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवाहो प्रभु मता। हर जस लिखो बेअंत सोहे से हता, चरण पुनीत पवित्र चाले हो प्रभु पिता। संता संग उधार सगला दुख लखा, श्लोक पावी ओदत करण हर रमन संजोग पूर्ण हो। गोपाल दरस पेंट सफल नानक तो मुहूर्त कीम न सका पाए सुख मीति हऊ बहारे, नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदरो माँ पीरी। पौड़ी सा वेला क्यों कहूँ है, जित प्रभ क्यों पाही सो मूर्त पला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पैर हर त्याये के मन इच पुजाई, वड्डे पास सत्संगत सत्संग होए निव होवे निव लागा पाई। मंदिर संग की प्यास है नानक बल जाई, श्लोक पतित पुनीत गोविंद हो सर्व दोख निवारण। शरण सूर भगवान भगवान हो, जपंत नानक हर हर हरे। छाते हब आप लगोड़ो चरना पास, नटूरे दुख ताप नानक प्रभ पे कंदिया। पौड़ी मेल लहे दयाल देव दहे पुए द्वारिया, रख लेवे दीन दयाल प्रमत बहु हारया। भगत वचन तेरा बिरद हर प्रतीत उधारया, तुझ बिन नाही कोई बिनो मोह सारया। कर गहे ले दयाल सागर संसारया, सलोक संत उदरम दयाल हंसत गोपाल कीर्तनिये। निर्मल संत संगेन उत नानक परमेश्वर, चंदन चंदन शरद रुत मूल न मिठे काम। शीतल कीवे नानका जपंदरो हर नाम। पौड़ी चरण कमल की ऊट उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद सुन प्रताप गोविंद निर्भो पहे मन। कोट न आवे मूल सचाया नाम तन, संत जना से संग पाइये वड्डे पुन। आठ पैर हर त्याये हर जस नीत सुन, श्लोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान हो नानक लिपत न माये, पहु पंद बलंदरी पूज कहे रखंदड़ो प्रभाप। जिन उपाही मेदनी नानक सो प्रभ जाप, पौड़ी जा प्रभ पहे दयाल न व्यापे माया। कोट कदार गहे नास हर एक तिहाई, निर्मल पय शरीर जंतूरी नाया। मंथन पय संतोख पूरन प्रभु पाया, चरे कुटम संग लोग कल सुबारे असलोक गुर गोविंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण गुर ग्याल समरथ गुर गुर नानक पतित उधरन पवजल बिकम अस गायो गुर बुहिचे तारियम नानक पूर करम सतगुर चरनी लागया पौड़ी कंतन गुरुदेव जिसंग हर जपे गुर कृपाल जब पे ते अवगन सब छपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो ऊंच सपे काठ तिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाय बेअंत रसना हर रस से श्लोक दृष्टंत एको सुनीत सुनीत एको वरंत एको नर हर नाम दान जाचिंत नानक दयाल पुरख कृपा करो हिक सेवी हिक समला हर एक पहे अरदास नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभु दयाल बेअंत पूरन एक हुए सब कुछ आप आप दूजा कहा कहे आप करे प्रभु दान आपे आप लहे आवन जाना हुक्म सब ने अचल तैस हुए नानक मंगे दान कर कृपा नाम दहे जेठरी पानी पुस्ता किए क्यों का सदगुरु प्रसाद नाम कुछ न जाने हो मन माया के हाथ दिखाने हो रहो तुम कहीं से हो जगत पुर स्वामी हम कहीं से कल झुक के कामी इन इन पंचन मेरे मेरो मन जू बिघावो पल पल हर जी के अंतर पारे हो जत देखियो तत दुख की राशि अजो न पाए अजो न पढ़ाए निगम बैसाखी गौतम नार उमापत उमापत स्वामी जिस तरन सहस बदगामी इन दुतन कल बदकर मारो पदो मधो निलाज अजो नहीं हारो कह रविदास कहा कैसे कीजे बिन रघुनाथ शरण ताकि लीजे का सपनाम करता पुरक निरपो निर्वैर अकाल मुरख अजूनी साहबन गुर प्रसाद राज टोडी मल्ला चौथा कर पहला हर बिन हर हर बिन रह न सके मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेरे बहुर बहुर न पवजल फेरा रहा मेरे हेरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ फेरा सदगुर दयाल हर नाम दिलाया हर पादर हर प्रभ फेरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक पाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विषरया पूरक चंगेरा ओ मन मुख मूर अज्ञानी कहिए तिन मस्तक पाग मंदेरा विदेश विवेक बोध सतगुर के पाही गुर ज्ञान गुर प्रभ केरा गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाहिए तूर मस्तक पाग लिखेरा टोडी मल्ला पंजवा कर पहला दुख दे क्यों का सतगुर प्रसाद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पास स्वामी राहू समाना ठाकुर थेरो अवर न काहू थानी ऐसो अमर मिलो पकवन क्यों रात रहे रंग ज्ञानी रोग शोक दुख जरा बरा हर जाने उन्हें निकानी निर्भु होए रहे एके अनक हर मन मानी टोडी मल्ला पंजवा हर बिसर सदा साकियों पोखा कहा व्यापे जाक्यों ऊट तुहारी रहा बिन सिमरन जो जीवन बलना सरब जैसे अर्जारी नवखंडन के राज कमावे अंचल चल होगी हारी गुण निदान गुण निदान गुण तीन तिन ही गाये जाक्यों कृपा तारी सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी थोड़ी मल्ला पंजमा कर दूजा चुप दे क्यों का सदगुरु प्रसाद आयो रे मन दह दिस पायो माया मगन सुआद लोभ मायो तिन प्रभ आप बुलायो राहो हर कथा हर जम हर जस ता संगत सियों एक मुहूर्त न एहो मन लाइये बिकस्यो पेक रंग कसुंबक्यो वरग्रह जोहन जाइए चरण कमल से पाऊ न कीने नय सतपुरख मनायो पदावत क्यों भाव्यो बहु पाती जियो के लिए पलक बलद प्रमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमक न कीरत गाइये नाना छूट लाए मन क्यों तय पूजो अपनायो प्रभकार न कभी हो क्या नहीं सतगुर सेवो सेव तिहाये तिहाइयो पंच दूत रस संगत घोषित मत वारो मद माइयो करो विनंती सात संगत हर भगत वचन सुन आयो नानक फाक भरयो हर पाछे राख लाज अपनायो ठोडी मिलना पंजवा मानुक बिन बुझे बिरता आया अनिक साज सिगार मोह करता ज्यो मृतक उदाया रहो ताई तई कृपन सुमन कीने एकृत करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा किथि काज न आया कर आवरण सवारी सेजा कामन खान बनाया संग न पायो अपने पत्ते पेक पेक दुख पाया मार सारो दिन समझूरी करता, तेहू मसले हो छराया, छेड पायो बिगारी नहीं आई, करके काम न आया, पऊ अनुग्रह जाक्यों प्रभु तीसरे दे नाम वसाया, सात संगत के पाछो परे जन नानक हरस पाया, थोड़ी मल्ला पंजवा कर कृपा निध बसो हृदय निर्दय हरनीत, तैसी पुज करो प्रकाशा लागे प्रभ सुन प्रीत राहो, दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो, महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो, आज्ञा तुमरी मीठी लागायो लागयो क्यों तुहारो पावो, जो तू देह तहे ऐ कृपते आन न कथे कठहू तावो, सद ही निकट जाने प्रभ स्वामी सगल रैन हुई रही है, साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लहिये, सदा सदा हम छोरे तुमरे तुपे हैं। मीरा नानक बारे तो तुम मात पिता सुख नाम तुम्हारो कीरा, थोड़ी मल्ला पंजवा कर दूजा दुख दे, क्यों कर सतगुर प्रसाद मायो, दान ठाकुर नाम अवर तू मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण नाम रहाओ, राजमान अनेक भोग रस अगल तरवर की छाम, ताही ताही भोग भी दुपता क्यों ताहो, तावे सगल निराश काम, बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम, कहूँ नाना संत रेण मांगियो मेरे मन पावे विश्राम, थोड़े मल्ला पनिवा सब जी को नाम नो अमधार सुधारो साधारे, जी प्राण सुख इस मन क्यों बर्तन ए हमारे रहो, नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरे परिवार है, नाम सिखाही सदा मेरे संग, हर नाम मोक्यो निस्तारे, बिखे बिलास रहित बहु तेरे, चलत न कछु संगारे, इस मीत नाम नानक के हर नाम पेरे, मेरे पंडारा थोड़ी मतलब बनवा, निके गुण गावो मिठो मीठी है, हो रोग मुख उज्जल मन निर्मल होई, तेरे तेरे रहे यह उन लोग रहो, चरण पासन करो गुर सेवा मनो चराहो भोग, छोड़ आप पत बाद वहकारा मान सोई जो होग, संत कहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहु नानक एक बिन दूजा अवर न करने जोग, थोड़ी मल्ला पंजमा सतगुर आओ शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंत लाए हमारी वहाओ, अवर न सूची दूजी ताहर हर पारे तुम द्वारी, लेखा छोड़ अलेख छूटो हो छूटे हैं हम निर्गुण लहे उबारी, शुद्ध सदा मेहरबाना सपना देहि आधारी, पाछे पारे हो राख ले पारी, थोड़ी मल्ला पंजवा रसना गुण गोपाल, निज कायन शांत संत सहज रह समन उपजो, सगले दुख पाल हायन राहो, जो मांगो सोई सोई पावे, सोई हर के चरण रसायन, जन्म मरण दुख के छूटे पवजन जगत परायन, खोजो खोजत वत बिचारियो दास गोविंद परायन, अविनाशी खेम चाहे जे नानका जे नानक सदा सिमरो नारायण, थोड़ी मल्ला पंजवा निंद गुरु कृपा के हाथियो पार ब्रह्म प्रभ दियाला, शिव के बोइन शिव के शिव के बाण सिर काट्यो रहो, खाल जाल जम जो इन साक्ष्य सचना पंथा काट्यो, खाड खर्च किस ने कुंत नाही, राम तन तन काट्यो, भस्म पूत होया सिन भीतर अपना किया पाया, आगम अगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सुभाया, थोड़ी मल्ला पंजवा कृपन तन मन दीर्घ सुभरे, सा संग पद कर जो ही ठहरे रावनिक छिद्र बोहित अमित छिद्र बोहित ते छूटत काम न जाहे करे, जिसका बोहित सराधे खोटे संग खरे, गली गली सहल उतावत चाहे हो चाहे उहा ई है तरे, जोर सकत नानक कितना ही प्रभ राखन शरण परे, छोटी मल्ला पंजवा हर के चरण कमल मन त्यागो, काद कुठार पित पात पित बात हंता, औखद हर को नाव राहो, सीने सीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताक्यो बिगन न कोई लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वेद नारायण करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक, थोड़ी मल्ला पंजवा हर हर नाम सदा सुध जाप कर, अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वस्ती की नी आप राहो, जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से सुख संताप, हाथ देहे राखे जन अपने हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरबाना त्या पतारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजना जाके वर प्रताप, थोड़ी मल्ला पंजवा स्वामी चरण प्रयोग दरबारे, कोट अपराध कंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहा, खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ बिचारे, साथ साध संग परम गत पाइये, माया रच माया रंच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जाप जब सगले रोग निवारे। थोड़ी मल्ला बंजवा कर दीजिए चुन तो न थोरी तेरे नहीं तू जानी मोरी रहो अपन राम न तीनो तीनवा जे जो पराई तू अपनी मनवा नाम संग नाम संगी सो मन न बसावो बसायो छोड़ जायो बाहु चित लायो छोड़ जाए बाहु चित लायो तो संचक जित भूख भूख तिसाहो ना अमृत नाम तोसा नहीं पायो शांत क्रोध मोह कूप काम क्रोध मुख कूप भरिया गुरु प्रसाद नानक तो तरिया थोड़ी मल्ला पंजा हमारे एको हरि हरि आन अवर शिवार न चली राह वडे पाक गुर अपना पायो गुरमुख क्यों हर नाम पायो हर साप ताप व्रत नेमा हर त्यावे कुचल सब खेमा आचार भगवार जात हर गुनिया मां आनंद कीर्तन हर सुनिया कौन आनंद जिन दात्र पाया सब किस जिसके ग्रह में आया। थोड़ी मल्ला पंजवा कर चौथा दुपदे किंगा सगुर प्रसाद रूढ़ो मन हर रंग रोड़ो गाली हरण ना होए राव हव दु देवी दर्शन कारण पीछी बीती बैठा गुर मिले परम गवाया है बज पाई में साधु कन्यो लेख लिखाया तूर माखो ऐ बज नानक हरण नैन अलोहा। थोड़ी मल्ला पंजवा गर्भ नसीबे मूर्त हेरे यो महाराज री माँ इो दहर न्याय मुँह पाख्यो रे रहाओ तनु तनु तनु सद लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महाराज रो महाराज रो गात वाहू स्यू लुभ त्यो निहाब नी पागड़ो पहा संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन संगलो सगलो थारे सगल प्रख्यात मिट्यो रे जाके लहनो महराज री महाराज री गाठ गाठ रियो जन नानक गर्भास ना प्यो रियो रे। थोड़ी मल्ला पंजवा कर पंजवा दूप दे किंगा सतगुरु प्रसाद ऐसे गुण मेरे ऊपर जी कीन पंच दो कर हूँ रोग ऐसन के सकल दूर कीन रहा बंधन तो छोड़ बिख्या के गुर के शब्द मेरे हेरे दीन रूप अनुरूप मेरो कछु न बिचारे प्रेम गेहो मुँह हर रंग कीन देखियो लालन पाठ बीच कोए आनंद आनंद चिता हर्त बतीन तिसी को ग्रह सोही प्रभ नाना सो ठाकुर किसी को तीन। थोड़ी मल्ला पंजवा माई मेरे मन की बीत ए करम सब करम जप जेह एवे एही करम धरम जप एही राम नाम निर्मल है रीत राहो प्राण आधार जीवन बन मेरो मेथन क्यों दर्शन प्रणीत बार कार श्रोता संग मेरो मन अपने कैसे मन अपने क्यों मैं हर सका की संत प्रसाद प्रेम निर्मल कर कृपा अपने कर ली तो सिमर सिमर नाना सुख पाया आज जुगाद पग संगे मीत। थोड़ी मन अपने प्रभु जी मिले मेरे प्राण बिछन आई निमक मेरे से अपने भगत को कुंदन और तो वो परम राज मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगत जान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दृश्य पर तारे प्रमाण आठ पहर रचना गुण गावे जस पूर अघावो समर्थ कान तेरी चरण जीवन के दाता सदा सदा नानक कुर्बान। थोड़ी मल्ला पंजा प्रभ तेरे पक्षी दूर दीन दयाल प्रीतम मनोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर राहो दया दिस रघु रया जब तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावो करते जे ते जन कबू न मरते चूर पन संद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपन्न भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। थोड़ी मल्ला पंजवा माया मेरे मन की प्यास एक दिन रह न सके बिन प्रीतम दर्शन देखन क्यों तारी मन आस रहा सिमरन नाम निरंजन करते मंथन के सब किलविख नाश पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा बेटे गुण सास सांस है सुख मन उपजो को सूर नानक प्रयास। थोड़ी मल्ला पंजवा हर हर प्रसिद्ध पावन जीव प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहो सुदर्श जो सुंदर सुगर चतुर सब बेता रिद दास निवास भक्तन गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करुण भूमि बीजन सो खावन विष्णु विष्णु पय विस्मादा आन प्यो दूसर लावन रचना सिमर सिमर नानक दास सदा बल चावन थोड़ी मिलना पंजवा माया माया माही माया छल तिनकी अगन छेद की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल राहो छोड़ सियाना बहुत कटाई दियो कर जोड़ साध मग छल सिमर स्वामी अंत मानुक देह का ए उत्तम फल वेद विज्ञान कर साधु जन पागहीन संगत ने खल प्रेम भगत राशे जन नानक हर सिमरन देवे देव देवन पहे मल थोड़ी मल्ला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन दूर पीठे रहो गुण गावत अच्छुत विनाशी काम क्रोध मिट्टी के अस्थिर पहे साच रंग राते जन्म मरण बहोर नहीं पीठे जिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पाया जन नानक नाम भी हूं चले सब झूठे थोड़ी मल्ला पंजवा साध संग हर हर नाम चिदारा सहज आनंद होए दिन राति अंकर बोलो हमारा राह गुर पूरा पेटो गुट भागी जाखो अंत न पारा वारा कर गहो काट ले जन अपना भिक्षागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुम संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः पुनः पुनः नमस्कारा थोड़ी मल्ला पंजवा माया मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख को वे हर सिमरत मिल से सब दुख रहा कोट जन्म के चल उसे सिमरत पावन तन मन सूखे देख स्वरूप पूरन पाई आशा दर्शन प्रेक्षत उदरी भूख चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध काम देन पार जात हर हर रक्ष नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्म न छोटी मल्ला पंजवा हर हर चरण दे उर तारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कारज सफल हमारे राहो पूर्ण दान पूजा परमेश्वर हर कीरत रत बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाइया ठाकुर अगम पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कुछ न बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नाना कंठ मझारे छोटी मल्ला आइकुंगा सतगुर प्रसाद कहूँ कहाँ अपनी अपमाई उर्जो कनक कामनी के रसन है कीरत प्रभ गाई रहो जग छूटे क्यों साथ जन के तास क्यों रच उपजाई दीन बंधन सिमरो नहीं कबहू होत जो संग सहाय मगन गए मगन रहो माया में निस दिन छूटी ना मन की गाय कहना न कब नहाय अनंत गत बिन हर की सरनाई छोटी पानी पुखता की एक सतगुरु प्रसाद कोई बोलो नीरवा कोई बोलो दूर जल की मछली चले खजूर काहे ने बखबाद लाइयो जिन हर पायो तिन्हों छिपायो रहा पंडित होवे के वेद बखाना मूर्ख मूर्ख नाम देव नाम देहो राम हो जाने कौन को कुलंक रहो नाम राम नाम लेत ही पतित पवित्र पहे राम कहत ही कहाओ राम संग नाम देव जन क्यों प्रगटया आई एकादशी व्रत रहे कहे क्यों तीर्थ जाई पनत नाम देव सकृत सुमत पहे गुरमत राम कहे को कोना बेकुंठ कहे गुरमत राम कहे को ना बेकुंठ रहे तीन चंडे खेल आछे रहा कुंभार केगर हांडी आछे राजा केगर चांदी गो बामन केगर रांडी आछे रांडी रांडी चांदी हांडी को बानिए केगर हींग आछे बेतर माथे सिंह रो देवन मधे लीग आछे लीग सीग लीग को तेली केगर तेल गाछे जंगल मध्य गो बेल गो माली केगर केल गाछे केल बेल तेल गो संता मध्य गोविंद गाछे गोकुल मध्य श्याम गो नाम मध्य राम गाछे राम श्याम गोविंद को राग बेराड़ी मल्ला छोटा कर पहला दुख दे क्यों का सतगुर प्रसाद सुन मन असत कथा हर नाम रिद बुद सिद्ध सुख पावो पद गुरमत हर हर ना हर राम राम राहु नाना ज्ञान पूरन पुराण जसु उत्तम खत दर्शन गावो राम शंकर कोड़ पीतस त्यागे नहीं जाने हर मर माम सुनर जन गुरु बंध जस गावे सब गावत जेतु पाम नानक कृपा करी हर जिन क्यों के संत पले हर राम बेराड़ी मंडा चोता मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान दियारो राहो तिस्तन क्यों मन तन सब देवे जिन हर हर नाम सुनारो तन माया संपे तिस देवे जिन हर मीत मिलायो किन किचिन कृपा कर जग भीतर तब हर हर राम जस तिहायो जन नानक क्यों हर बेटे राम स्वामी दुखों में रोग दिया गवाहे बेराड़ी मल्ला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहा जो कुछ करे तू आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत विस्तारा विच ताड़ो पंच विच धातु पंच थाप अपावे जन नाना सरगर मेले आपे हर आपे चगत चुकावे बेराड़ी मल्ला चौथा जपमन नाम नाम निस्तारा कोर कुरंतर के पाप सब धोवे हर पवजर पार उतारा रहा उतारया नगर बसत हर स्वामी हर निर्भो निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत चक्षुरा नादर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साहे सराफ रतन हीरा आ हर आप क्या पतारा नानक जिस कृपा करे तू हर नाम बिहाजे तो सहा सच्चा बन जा रहा पे राड़ी मल्ला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्यावे सुख दाता जाके वंतना पारा वारा रहा अगन कंट माहे उर्द लिवलागा हर राखे उंदर मजारा सो ऐसा हर सेवे मेरे मन हर अंत छादन हारा जाके हृदय वसे मेरा हर हर तिस जन क्यों करो नमस्कारा हर कृपा के पहिए हर जप नानक नाम धारा बेदारी मल्ला चौथा जप मन हर हर नाम नित आइए जो इच्छे सोई फल पाए फिर दुख न लागे आई रहा सो जब तू सब ताप पूजा जित हर हर हर सियो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब सूची एक खिन में बिसर सब जाए तू बेअंत सरब तल पूरा किस कीमत कहे न जाए नानक शरण तुम्हारी हर जो पावे क्यों छावे राग बिराड़ी मल्ला चौथा कर पहला एक दिन पर सदगुरु प्रसाद संत जना मिले हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहा जो चाह हर चोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिहाय दिवाय सर्व सुख हर नाम बधाई गुरु प्रसाद नानक मत पाई राग तिलंग मल्ला पहला कर पहला एक का सतना करता पुरख निरपोह निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सैबन गुर प्रसाद यक अर्ज गुफन गुफ्तम कैश को दर दोस्त कुन कुन करतार हका कबीर करीम तू बेआब पर्वतगार दुनिया में कामे फानी तहकीक दिलदानी मम सर मुहे अजराइल गिरफ्त गिर फते गिरफते दिल हेच न जानी रहा जन पिसर पदर बिरांदरा कस नेस दस्तंगीर आखिर वेस्तम कस न दारद तू सबद तकबीर सब रोज गस तम धर हवा कर देन बदि ख्याल काहे के गाहे ना नेकी कार करदम मम इही चीनी अव हाल बद बखत हम तू वकील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बदयोग जन तूरा तेरे चाकर पा थाक तिलंग महला पहला कर दूजा एक का सदगुरु प्रसाद पहुँच तेरा पाग खल हरी मेरे शीत मैं देवाना पाया अतीत कर काशा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत क्यों दर्शन की करो समाये मैं दर मागत पीछे पाए रहा केसर कुमन केसर पुष्प सिर मेर जमे हरना सर्व शरीर चरना चंदन बक्ता जोट इन्हें सर्वे परमन करना यूं पथ दांडा कहे न कोई ऐसा पगत वरण में सो होई तेरे नाम निवे रवे लिवलाही नानक तिन उत्तर बिख्या पाही तिलंग मल्ला पहला सब की जय क्षमता सतगुरु प्रसाद ऐतन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगावे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सहजे जाहे ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਨਿਰਵਾਣਾ ਹਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਹੁ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਚਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚਿਨਾ ਕੇ ਹਉ ਸਦੁ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਰਹਾਉ ਖਾਇਆ ਰੰਗਨ ਤੇ ਕੀਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦੀਖ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਠ ਚਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤੂੜ ਚਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੇ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਾਵੇ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਆਨ ਰੀਏ ਆਨਰਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ ਆਪਨ ਨਰੇ ਆਪ ਨਰੇ ਕਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਨਹੇ ਸਹੂ ਨੇੜੇ ਤਨ ਕੰਮ ਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਤੁਡੀਵੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਤੁਡੀਵੇ ਬਹਿ ਕਿਆ ਦੇਹ ਸਲਾਹੀਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਨ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ ਜਾਸ ਕਰੇ ਪਿਆਰੋ ਯਾਨੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਤਨ ਕੰਠ ਨਾ ਪਾਵੋ ਕਰਨ ਪਾਲੋ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਚ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਪਾਵੇ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਹਾਸਮਾਨੀ ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੂ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਨਾਹੀ ਪਏ ਕਾਮਨ ਇਆਨੀ ਜੋ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਨੀ ਵਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਏ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਹਿਕਮਿਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਤੂੰ ਚਰਨੀ ਚਿਤਲਾਈਏ ਸਹਿ ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੇ ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਸੇ ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈਏ ਇਹ ਕਰੇ ਸੁਹਾਗਨੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾ ਸਹੁ ਪਾਈਏ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਿਤਰਾਈਏ ਸਹਿ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਦੇਖੇ ਸੋ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਨਿਜ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਪਿਆਰੀ ਜਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਖੀ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਖੀ ਅਹਿਨਾਸ ਪਾਈ ਸਮਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਹਿ ਸਰੂਪ ਬਿਛਕਨ ਕਹੀਏ ਸਾਸਿਆਨੀ ਤਿਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜੋ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਆਪ ਕੀ ਜਮ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਪਾਈਏ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਤਰਮ ਦੁਹੇ ਛਾਪ ਖਲੇਵੇ ਤੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਾਜਿਆ ਭਾਵਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੱਚੀ ਅਗਦ ਪਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਮੁਸਲ ਮਾਨਿਆ ਪੜਿਓ ਕਤੇਬਾ ਕਸਤ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਖੁਦਾਹੀ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸੁਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿਦ ਵਾਨੀਆਂ ਇਹ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਖੂਨ ਕੇ ਸੁਹੇਲੇ ਗਾਵਿਓ ਨਾਨਕ ਰਥ ਕਾ ਕੁੰਗ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਸਾਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਸੰਭੋਲੋ ਆਖ ਮ ਸੋਲੋ ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਰੰਗੀ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਇਕਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ ਮ ਸੋਲਾ ਕਾਈਏ ਕਪੜ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ ਆਵਨ ਅਥਰ ਅੱਠ ਥਰੇ ਤਰੇ ਜਨ ਸਤਾਵਨੋ ਹੋਰ ਪੀ ਉੱਚੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚੀ ਬੇਲਾ ਤਿਲੰਗ ਮੱਲਾ ਚੋਤਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇਕੁਮ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਮਾ ਖਸਤ ਮਾਹੋ ਹੁਕਮ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ਸਰੀਕ ਤਿਸ ਲੇਖੇ ਹੁੰਗਨੀ ਰਾਹੋ ਪਵਨ ਬਾਣੀ ਕੱਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਬਣੀ ਵਿਰਵਰਤੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਟੂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਨੀ ਤਿਲੰਗ ਮੱਲਾ ਚੋਤਾ ਨਿਕ ਨੈ ਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵਧਾਵੇ ਦੁਰ ਮਤੀਆ ਜਬ ਆਨੇ ਵਲਵੰਚ ਕਲ ਝੂਠ ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜੀਤਿਆ ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੇ ਸਾਰ ਨਸੇਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਆਵੇ ਰਾਮਾ ਤਹਾਉ ਤਾ ਵੇਲਾ ਚਿਤਨਾ ਆਵੇ ਜਿਤਾਵੇ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਜੁਰਸੇ ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਡਾਵੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਹਰੇ ਤਿਰੰਗ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਬ ਸਰਬ ਸਭ ਹਾਂ ਕਨੂਰ ਕਰੰਦ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਖੂਦੀਆ ਬੰਦੇ ਚਸਮ ਦੀਨ ਫਨਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਰਕਾਰ ਕੁਰਦਨੀ ਗਾਫਲ ਹਵਾਏ ਰਹਾਓ ਗਬਾਨ ਹਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸਤੀਨੋ ਮੁਰਕਾਰ ਬਖਰੋਹੇ ਦਿਲ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੋ ਗੋਜਕ ਦੋਜਕ ਸਜਾਏ ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ ਬਿਰਾਦਰਾ कर दरबार में लखनाए जब अजराहिल वस्तनी तब ही ची कारे विधाये हफाल मालूम करंद पाक अलाहा बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा हो लंग कर दूजा महला पंजवा तुझ बिन दूजा ना ही कोई तू करतार करे सो होए तेरा जो तेरी पन टेक सदा सदा जब नानक एक सब ऊपर पार ब्रह्म दातार तेरी टेक तेरा आधार रहा हूँ तू तू होवनहार अगम अघात ऊंच पार जो तुझ से वे तिन को दूसना है गुरु प्रसाद नानक गुरु गाये जो दिशे सु तेरा रूप कुंड निधान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोई नानक करम प्राप्त होए जिन जपया तिस हो बड़े जिन जपया तिस क्यों बलिहार इसके संग तेरे संसार का नानक और दोचा पूर संत जना की बाछो तूर तिरंग महला पंजवा कर तीजा मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान जी जगल क्यों देह दान राव तू तू कहे डोलो प्राणी तुझ राखे राखेगा सज्जन हार जिन पैदाइश तू किया सोई देह आधार जिन उपाय मेदनी सोई करता सार कटकट पालक दिला ना सच्चा प्रवोधगार कुदरत कीम न जानिए वड़ा बेप्रभाव कर बंदे तू बंदगी निश्चत जत में चाहो तू समरत अखत अगोचर जो पिंड तेरी रास
1: प्रेम तेरी सब पाया सदा नानक की प्रभाव करते कुदरती मस्ताक दीन दुनिया एक तो ही सब खल्क ही पे पाक फिर मैं ताप थामता अचर्च तेरे रूप कौन जाने चल तेरे अंधेरे में दीप खुद खत्म खल्क जहान हल निर्वाण कदाई दिन श्रैन जे तो दुरादे सो क्यों दोष जाए अजराई उजार बंदे जिस तेरा आधार बने उसके सब आपू तेरे जन देखे दीदार दुनिया चीज फिर हार सकले सच सब तेरा नाव गुरमिल नानक बूझया सदा एक सौ रंग महला पन मीरा दाना दिल सोच महफे मन तन वसे सचा बंदी होच राव दीद ने दीदार साहब कछ नहीं उसका मोल पाल परवतगार खुद कसम वडा सोल दस्तगीरी दे दिलावर तुम्हें तुम्हें एक करतार कुदरत करण काल नानक तेरी टेक दस्तगीरी दे दलावर तू ही ए करतार कुदरत करण काल नानक तेरी के रंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जन किया तेन देखिया क्या कही रे भाई आपे जाने करे आप जन वाड़ी है लाई रहसा प्यारे का रहसा जिस सदा सुख हो ही रहा जन रंग कंत न रावया सा पछोरे प्राणी हाथ पिछोड़े सिर तुणे जब रैण महाणी पछोतावा ना मिले जब चुकेगी सारी ता फिर प्यारा रावीए जब आवे जी वारी कंत लिया सागनी मैं ते बदली एहे छे गुण वजनाया आमनी कैसी दोस्त रहे जिनी सखी सौ रावया तेन पूछो कोई जाए पाए लगो बेनती करो ले भी पंत बताए हुक्म छाने नानका पाओ चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलया सो मिलया करे कही रे सोई ये बहुत तेरा लोचिए बाकी मिलना हुई तात मेरे फुन को कहो तात मेरे फुन तात कहो लिव लवे कहो तावे गुरप्रसादी जानिए तव अंत पावे पाना माड़ी होए कर कर सार न जाने रसिया होए मुस्काता फूल जाने अप्यो पीवे जो नानका परम परम समावे सहजे सहजे मटे अमरा पद पावे रंग महला चौथा हर की कथा कहानियां गुरमी सुनाइयां बलहारी गुरे अपने गुर का बल जाइयां आए मैं गुर से खाए मैं तू मेरे गुरु के प्यारे आओ हर के गुण हर भाव देते गुरु के पाए जन गुर का पाना मनिया तन घुम घुम जाए जन सतगुर प्यारा देखिया तन कहो वारी जन की जन गुर की जाकरी तन सत बलहारी हर हर नाम तेरा नाम है दुख काटन हारा गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा जो हर नाम कहें दे से जन परवाना तिन मिठो नानक वारिया सदा सदा कुरबाना सा हर तेरी उसत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सहन दे तिन हर प्रभ पावे जिन्ना हर से पीपर हड़ी तिना जी प्रभ नाले वे जब जब प्यारा जीव दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेव्या तिन को घुम जाया वे आप छुपे परिवार तो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेव्या गुर धन गुर धनो गुर हर मार्ग दस्या गुर पुन वट पुनो जो गुरसह गुरु सेम दे से पुन प्राणी जो गुरसह गुरु सेम दे से पुन प्राणी जो नानक तन को वारिया सदा सदा कुरबाणी गुरमुख सखी सहेलियाँ से आप पर पाइया हर दर के पन आइया हर आप गल आइया जो गुरमुख नाम ध्यान देखन दर्शन दीजे हम तन के चरण पाल दे तूर कोल कोल टीजे पांच सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदन चेत्यो जम पकड़ चलाइया जन हर नामा हर चेत्या हृदय और तारे तन जम लेना आवे गुरसिख पर प्यारे हर का नाम दान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलियां माने सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ हो गुर विचों सदवारिया जिन दिपड़ा ना हो सो तन गुरु सबास है अरदे स्नेहा हो वेख वे गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मनिया तना भुख सब जावी हर का मार्ग अखी कहो किद पित जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च लै जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से सब वडलाने हो सतगुर कहो सदवारिया गुर भजन सुनाने तू ठाकुर तू साहब हो तू है मेरा मीरा तुद भावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बौरंगी जो तुस भावे नानका सोई गलसंग आपे हर एक रंग है आपे बौरंगी जो तुस भावे नानका सारी गल चंगी रंग महला नामा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तो चेत लय निस्तिन मैं प्राणी चन चन औद बहाद है कुटे घट ज्यों पानी रहो हर गुण काए न गावी मूर्ख अज्ञाना झूठे लाल चला के न मरन पछाना अजू कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभु गुण गावे कहो नानक के भजन से निर्भय बल पावे रंग महला सलंग महला नामा जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहाँ गाफल सोया जो थने उपजा संग ही सो की संग न होया रहो मात पिता सतबंध जन हित जा सो कीना जियो छुट्यो जब दे से डार अगर मैं दीना जीव ते लियो व्यवहार जीव तलो व्यवहार है जग को समझानो नानक हर गुण गाय ले सब सुख समान रंग महला नामा हर जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो अवसर बीचो जात है क्यों मान ले मेरो रहो संपत रस धन राज क्यों अतने लगायो काल पंज गल परी सब भयो परायो जान बूझ के बावरे ते काज बिगाड़ियो पाव करत सचो नहीं नहीं न गर बनवारियो जे विद गुर उपदेसिया सो जन रे भाई नानक है पुकार के गो प्रभु समाई लंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद दे विस्परा भाई दलता फिक्र न जाए टुक दम करारी ज्यो करो हाजिर हजूर सदाए बंदे खोज जेल हर रोज ना सिर परेशानी माहे ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी ना हे राव द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाग बताहे हक सच काल फलक म्याने श्याम नाहे समान म्याने रंग लरिया गुसल करदन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जय छा मौजूद अला पाकिन पाक है ऐसा करो जे दूसर होए कबीर कर्म प्रेम का ओ करे जाने नामदेव जी मैं अंदले की टेक तेरा नाम कुंड कारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अधारा रहो करीमा रीमा ला तू गनी हाजरा जोर गर के तू मनी दरियाओ तू दहंत तू विचियर तू तनी देह ले एक तू दिवर को नहीं तू जाना तू बिना मैं विचार क्या नामे चे तू नुकसान तू हरी हले जाना कुछ खबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ निकी तेरी गारी आले तेरा ना हो रहो कुजा अमृत कुजा शक्ति कुजा मैं रवि द्वारका नगरी राश कोई खूब तेरी पगड़ी मीठी तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एकल एकल खाना हिम हम चिनी पासा सामले करना अस्पत गजपत नरेंद्र नामे के स्वामी मीर मकंद एक ओंकार सब नाम करता निर्भव निर्वैर भागवत प्रसाद राग सोही महला पहला चौक दे कर पहला पांडव कोय बह सू में होता दूध जब पर जाओ लूट करम तुम सब समयन होए मराज जमावो जपो ताई को नामा और नाथ सामा रहो ए मन की आस करो फल निकलो नींद न आवे रचना नाम सबो तम की एन बे तो अमृत पावो मान संपुट जित शास्त्र नामण भावन पाती करे पूजा पान सत जैसे एन बे रह साहेब रख रहे कहंदे कहे कहे कह जावे कौन करे और ना कोई भक्ति नानक जम जम पे हाओ साला ही कच्चा सोई सोही मला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर बसे ना बाहर जाए अमृत चोर काहे जपाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे के रहो ज्ञान के अनुसार कोई रवे बंधन बंधिया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जग थल मैया रव रहा सोए ਹਾਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਉਤਨਾਨ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬਾਰ ਸੰਗੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਜਲ ਕਹਿਣਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਹਣਾ ਪ੍ਰੇ ਜੇ ਸਭ ਭਾਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਜੀਏ ਤਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਰਹੋ ਕੋਠੇ ਮੰਡੋ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਰੀਆਂ ਰੱਠੀਆਂ ਕਮਨਾ ਆਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਸਨ ਕੁੜਕੁੜ ਦੀਆਂ ਕਾਮਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹਨ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨ ਸੇ ਭਲ ਕਮਨਾ ਆਮਨੀ ਸਹਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਨ ਹਨ ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਪਹੁੰਚ ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੋ ਚੜ ਲੰਘਾ ਕਿੱਤ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਹ ਸਿਆਣ ਕਿੱਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜੇ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਬ ਤਾਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਾ ਜਿੱਤ ਲੰਘੇ ਬਹੇਲਾ ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੇਲਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਮੰਜੀ ਖਿਲਾ ਰੱਖਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਇਖਲਾ ਰੱਖਾ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਸਾਧ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ਰਹੋ ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੇ ਗਾ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ ਆਵਾ ਗੁਣ ਨਵਾਰਿਆ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਨ ਵਾਰਿਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਬੋਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਹੇਲੀਓ ਸਭ ਕਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸੱਚਾ ਕਸਮ ਮਾਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਭਾਉ ਤਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਦੋ ਸਾਰ ਸੀ ਸਹਿਸਾ ਮੂੜੇ ਨਾਹੇ ਸਰਪੁਰ ਤਾਰ ਸੀ ਤਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਏ ਜਨ ਕੋ ਲੀਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਲੀਕਿਆ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਭੋਲੇ ਨਾ ਭੀਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹੇ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ ਘੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੱਥੇ ਕੋਏ ਢਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਆਸ਼ਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਲੇ ਅੱਤੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਪਾਸਿਓਂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗੇ ਭੋਗੀ ਹੋਏ ਖਾਏ ਤਪਿਆ ਹੋਏ ਤਪ ਕਰੇ ਸੀ ਮਲ ਮਲ ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਵਹੇ ਅਲਾਏ ਰਹੋ ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਲਣੇ ਸੋ ਕੱਚੇ ਸੋ ਪਾਏ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਣ ਨਿਸ਼ਾਣੇ ਜਾਏ ਪੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਏ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੀ ਸੋ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬਹਿ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨਾ ਆਵੀ ਜੇ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੇ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਏ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂਨ ਮਢਾਏ ਮੁੰ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਮਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਲਈਏ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਪਾਈਏ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦਿਸ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ ਰਾਵ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਵ ਸੰਸਰ ਭਾਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਲਈਏ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੇ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹੀਏ ਨਿਜ਼ਰ ਝਰੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ ਵਾਜੇ ਵਾਜੋਂ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੇ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਏ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੋਂ ਪਾਈਏ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕੌਣ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬੁਲਾਵਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬਹਿ ਦੇਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕਹਿਤੇ ਮੁਲਕ ਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਭਰਪੁਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਸਮਾਣਾ ਰਹੋ ਮੰਤ ਰਾਜੀ ਜੇ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਖ ਸ਼ਰਾਬ ਕਮਾਵਾ ਘਾਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਸੋ ਕੋਲੀ ਇਹਨ ਦਿਲ ਚੇ ਤਰਾਵਾ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਬੂਝੇ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਅੰਦਲਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਪਰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਆਵੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂਹਰਾ ਪਾਵੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਇੱਛਾ ਮੰਤਨ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਸੁੱਖਾ ਡਰ ਜੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਰਸੁੱਖੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ ਹਰ ਪਿਆ ਰਸ ਲਟਕੇ ਰਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੇਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਮ ਧੋਵੇ ਪੱਗ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰਸ ਕੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਸੀ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਵੇਚੋ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਭਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖੋ ਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪੁਰਪੋਤਮ ਸਭ ਦਿਨ ਸਿਧਾਲ ਦੁਲਗਾ ਪਉ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਭੇਟਿਓ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਅਸਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਫਿਰਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੇ ਸਿਰ ਵੇਚ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਚਾਹੋ ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ਬਿਨਾਵੇ ਪਗੜ ਖੜੇ ਸਭ ਫਲਗਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਰ ਡੰਡਲ ਗਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨੇ ਅਤ ਫਲਗਾ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਗ ਜਨ ਕਿਰਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਰਣਾਗਤ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤ ਫਲਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਦੇਹ ਸੁਭਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰ ਜਨ ਤੁਮਕਾ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਮੋਕੋ ਦੀਜੇ ਦਾਨ ਹਰ ਨਿਪਕਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਮ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦ ਭੁਮਕਾ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਗੁਰ ਸੁੱਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਸੁੱਠੇ ਹਰ ਪਲੇਸਿਆ ਹਰ ਪੇਟਿਆ ਰਾਵਣ ਸੰਗ ਰਹਾਓ ਮੁੰਦੇ ਆਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਪਰਿਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਹਿਲਾ ਸਭ ਮਹਿਲ ਭਰੇ ਦੋ ਚਾਰੀਆਂ ਰੱਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭ ਲਾ ਸੇਖੇ ਲੋਕ ਪੰਗ ਹਮ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਓ ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ ਅੰਤ ਰੋਗ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਬਾਹਰ ਭੇਗ ਬਹੁ ਚਿਤਰਾਈ ਮਨੁ ਆਉਂਦਾ ਤਸਤਾਵੇ ਹੋਮੈ ਵਿਆਪਿਆ ਸਭਨਾ ਕਿਨੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਆਵੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੇ ਸੋ ਜਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇੱਕੋ ਬੂਝੇ ਇੱਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਕਜਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸਾਂਤ ਵਸਾਈ ਤਿਸ ਨਾਗਨ ਬੁੱਝੀ ਕਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਮਿਲੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗੁਆਈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਈ ਆਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਹ ਢੰਡਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਸਮਾਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਰੂਲਾ ਹੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਦਰ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵਾਏ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਜਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਭਾਈ ਤੋ ਕਤ ਅੰਤ ਸਾਧ ਲਭਾਈ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸ ਰੱਖੋ ਹੋਰ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਰੇ ਸਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੀ ਜਾ ਧਰ ਜਪਿਆ ਉਤੋਂ ਕਦੋਂ ਪਾਏ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜੇ ਸਜਾਏ ਹਰ ਕੀ ਅਕਤ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ ਜਿਥੈ ਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ ਹਾਓ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮ ਕੇ ਤਦਾਏ ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਤੇਤੀ ਲੋਕ ਚੀਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਡੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਓਲੀਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਖ ਅਰਸਰ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅੰਦਨ ਪਰਸੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਰਾਏ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤਿੰਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਲੁਲਾਰਾ ਤਿੰਨ ਕੀ ਵਕੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਰ ਹਰ ਹਾਓ ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਬਖਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਨਕੀ ਸੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਭਗਤ ਮੋਹਕਾਰਾ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਨਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਿਰ ਨੰਦ ਕੈ ਪਵੇ ਚਾਰਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੀੜੀ ਆ ਜਗਾਲ ਵਕੀਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਨਸਤਾਰਾ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਮੁਖਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਹੋਰ ਸਵੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚੀਏ ਭਾਈ ਜੇ ਹਲ ਪਲਸਾਰ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਰਹਾਓ ਸਤਸੰਗਤੀ ਸੰਘ ਹਰ ਧਨ ਖੱਟੀਏ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋ ਪਾਏ ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹਰ ਰਤਨੇ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਧਨ ਮਾਜੇ ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਏ ਵਾਕੇ ਹਰ ਧਨ ਲੈ ਅਨਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜੇ ਹਰਮਾਨ ਹਰ ਧਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਹਰ ਪੱਤੀ ਹਰਲੇ ਬੁਲਾਈ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾਏ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਕਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਪੁੱਤੇ ਨਾਹੀ ਫਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਧਨੇ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਧਨ ਨਿਰਪੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰੇ ਪਾਣੀ ਜਮ ਲੂਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਧਨ ਕਹੋ ਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੀ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਧਨ ਨਾ ਲਗਾਈ ਸਾਗਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਤਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਤ ਦੇਹਲੇ ਪਏ ਹੱਥੋਂ ਛੁੜਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲ ਸਾਗ ਧਰ ਗਰਗੇ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਭ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਗ ਚਲਾਈ ਇਸ ਹਰ ਧਨੇ ਕਾ ਤੋਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸੋ ਜੀ ਪਾਈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣਾ ਰਵੇ ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਬਣੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜੀਓ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਾਓ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਰਮੰਦਾਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸਾਧ ਕਾਮਨਾ ਅਰਥ ਸੋ ਨੇ

काल कायन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उभरे गौर शब्दी हो मैं छुटिया वस आण्यो वे जन इस मन कौ मन वासे ज्यो नित पाउंदिया दुख रहन वे बिहानिया ने त्यासाद करेंदिया सुख पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर जाउंदिया जन नानक प्रभ दी मती साडे आसा नित सुख सौंदिया सात अन आसा चित करी राम राजिया हार प्रभ सेजड़िया आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा ने मलाई मैं मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर शरदा सेज विछाई जन नानक हर प्रभ भाणिया राम राजिया मिलिया सह सुपाई एक दसे जय हर प्रभु राम राजिया गुर दसे हार मिले मैं मन तन प्रेम बैराग है राम राजिया गुर मिले कृपा करे हों गुर बिटों कोल कमाया राम राजिया जियो सतगुर आग्या देई गुर तुठा जियो राम राजिया जन नानक हर मिले राग सुखी संत महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन बाबरे तू काए देख भुलाना सुन बाबरे ने कूड़ा लायो कुसुम करंगाना कूड़ी देख भुलो अड लहे ना मुलो गोविंद नाम ने मजीठा थी वै लाला त गुलाला शब्द ना जीन मान गुर मूठा शब्द जीन गुर मीठा मिथ्या मोह मगंथी रहे झूठ संग लपटाना नानक दीन सरण कृपा निध राख लाज भगदाना सुन बाबरे सेव ठाकुर नाम नाथ पुराणा सुन बाबरी जो आया तह जाना ने चलाब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रहे रही है हार पाई है भागी सुन बैरागी पा चरण प्रभु कह रही है यह मान दीजै संग न कीजै गुरमुख ताज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आख बखाना सुन बाबरे क्या कीचै कूड़ा मानो सुन बाबरी हब वैसी गर्भ गुमानो ने चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरिया है पौ जल तरिया जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से विजय अमृत पी जाए जिस लावे सहज त्यानो नानक सरण पया हर द्वारे हो बल बल तिस कुरबानो सुन बाबरी मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बाबरी जी थी ओ रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया दिन सुख पाया बडबागी दर्शन पाईया थी उन माणा सदगुर कुरबाना सगला मैं आप मिटाइए धन।

सेवी गुण रवा मन सच्चे रचनी। प्रभु मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी, सतगुरु चरणी लगिया हर नाम नित जपनी, जो चे सुल पाइसी सब करे विच जचनी। श्लोक महला पहला। पहल संत आगमन पहला मौलिय सोई, जित मिलिए जित मौलिए सब मौलिए किसे न मौलिए कोई। महला दूजा पहल बसंत आगमन तिसका करो विचार, नानक तो सलाइए जे सबसे दे आधार। महला दूजा मिल ए मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे हुए।

भक्त बछल ले काटन हारे संसार सागर अब उतरे पारे पतित पावन प्रभ वेद वेद लिखिया पार ब्रह्म सोने नो देखिया साध संग परकटे न रहण नानक दास सब दुख भलैण बलावल महला पंजवा कवन जाने प्रभु तुमरी सेवा प्रावे अबनासे अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभ गह गबीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे प्रावे अबनासी अलख अपेवा।

अर्थ धर्म काम काम मोक का दाता पूरी पै सिमर सिमर बेदाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुर आणिया बलावल महला पांचवां।

नरसीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चक मारियो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, मृतक फांस गले सिर परे। मृतक फांस गले सिर पैरे, कौ नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राजू मुलाबल महला पंजमा, घर चौथा दो पते एकमकार। सतगुर प्रसाद कवन सजोग मिलियो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ कै नित त्याऊं, कवन सो मत जित प्रीतम पावूं रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक त्यावूं को, कवन सो मत जित प्रीतम पावूं रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसरन काहूं बेरे। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हिरदे त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गौर दुख काटिया तीनों दान, सफल जन्म जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कौ नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, सात पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनाद दूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। नंद करो मिल सुंदर नारी, गौर नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल महला पंजवा।

सागर अत पाई उधरों साध संग रखवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समर्थ स्वामी जियो पिंड सब तुम्हारा मा तुम्हारा माल। परम के बंदन काटू परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलाबल महला पांचवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद सुमारिया साध जना हुए कृपाला। बिकसे सब परवारिया कारज सतगुर आप

नेत्रया तर तर तेरिया एक नाम है पारा, जो तुम करो सोई पल मानो लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पुखारू कर सेवा जेठा कर पावे, होए कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा। मृत हसे सर उपर पशुआ नहीं बूझे, बाद साध हंकार में मरना नहीं सूझे, सतगुर सेवू अपना काहे फिरूं उपागे, देख कुसुम्बा रंगला काहे फूल काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्ब किया बर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किए शर्म करे ते बैर बरोधी, अंत काल पद जाएंगे काहे जलू करोधी, काहे जलू करोधी, दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कौ नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलाबल महला पंजमा। पिंगल पर्वत पार परे खर चतरब कीता, अंधले तिरवन सूजिया गुर पेट पनीता, मेमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता, रहाओ जैसी भगत गोविंद कीत हस्ती जीता, जो जो किन्ने अपनो अति सवेदान दीता, सिंह बुलाई होए गयो तिर मोर तिर मेर दखीता, सरम करते दम आड़ को ते गनीत नीता, कवन बढ़ाई कह सकूं बेअंत गनीता, कर कृपा मोर नाम दियो नानक दर्श सरीता। बलाबल महला पांचवा। ओ बिन बार बाद नीत लोभ रसना साध, लपट कपट ग्रह बेदिया मिथ्या बख्याद, ऐसी पेखी नेत्र माए पूरे गुर प्रसाद, राज मिलिख तन जोवना नामे बिन नामे बिनवाद, फिरत फिरत मां नुख पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चुकिया बहु जून प्रमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर विस्माद, सुख सहज नानक नंद ताके पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पै संत बहोता तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यानान मैं गुर दसे भेद, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हर हेत, उठत बैठत सोवते हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साध संगेत, पूंजी सावत कणो लाभ ग्रह सो बसेत, नेचल आसन मिट्टी जिनत नाही डोलेत, परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत, गुण गवीर गुण नायिका गुण कहिय तेत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बराबल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो व्यर्थारी, मिलत संग सब पर मिटे गत पई हमारी, ज्ञान दिन पेटे साध मोहे ऊहा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जीरा फिर हों वारी, रहाओ ए सछडाई मोहते इतनी दृढ़तारी, सगल रेन ओ मन पया अबना बेनसी अपतारी, नेंद चेंद पर दुख ना एखन माह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दुरारी, मन तन शीतल पय अब मुक्ते संसारी, हित चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करूं तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दऊं गुण सुनूं रसाल रसाल,

जागत उदारण साध प्राप्ति लागू पाल मैं कौन दीजे दान प्राव संतन पग पराल औखत सियाण कछ नहीं नाही कछ काल पर मैं पैरा खू मोहते काटू जम जाल बिनु करू करुणा पते पिता प्रित पाल गण गावू तेरे साध संग नानक सुख नसाल मिलागल महला पंजवा कीता लोड़े सो करे तुझ बिन कुछ नाहे प्रताप तुम्हारा दे के जमदूत छड़ जाए तुमरी कृपा ते छुटिए बिन से अमेम सर्व कला समर्थ प्राव पूरे गुरदेव रहाओ खोचित खोचित खोजिया नामे बिन पूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मन सापूर जित जित लावो तित तित लागे सियानक सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब कुछ तेते मांगना बड़पागी पाए नानक की अरदास प्राव जीवा गुण गाए बिलावल महला पांचवा साध संगत कै बास वै कल मुख सब नसना प्रभ से ती रंग रातिया ते गर्व नग रसना नाम कहत गोविंद का सूची पै रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ हर रस चाकत तरा प्या मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बगसना शीतल सात संतोख होए सब बूझी तृष्णा तै दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखण हारे राख्या पै परम पसना नाम निदान नानक सुखी खेप साध दर्शना बराबल महला पंजवा पानी पखा पीस दास के तब होए निहाल राज मिलक सुखदारियां अग्नि में जाल संत जना का छोरा तिस चरनी लाग माया तारी छतरपत तेन छोडू त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान गृह सागत क्षति प्रकार ते दिखू समान भगता जना का लूंगरा उड़ नगन होई सागत सिर पो रेशमी पैरत पतख होई साकत सिंह मुख जोरिए अद विचों टूटे हर जन की सेवा जो करे त्यों उत्तों छूटे सब कुछ ही ते हो आप बणत बनाई दर्शन भेत साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा सरबणी सुनो हर हर हरे ठाकर जस गावो संत चरण कर सीस तार हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ ए निध सिद्ध बुलावो पावो ए सिद्ध पावो संत जना की रेण का लै माथे लावो रहाओ नीच ते ऊच अत नीच होए कर बिनु न पावो

सिमरू सिमरू साथ साथ मत बिलम करे, छोड़ पर पंच प्रभ सियों राचू ताज कुले ने, जैन अनेक जैन अनक एक बहुरंग किए है होती ए, कर सेवा जिस पार ब्रह्म गुर ते मीत लिहे, ऊचे ते ऊचा बड़ा सब संग बरने, दास दास के को दास रा नानक कर ले, लाभ लभना पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुण पास, जन का नाम उद्धार है प्रभ सरनी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे, रहाओ आप रखे आप देव सी आपे प्रित पारे, दीन दयाल कर परम दे सास सास समारे, कारण हार जो कर लिया साई वड़ियाई, गौर पूरे उपदेसया सुख खसमर जाई, चिंत अदेसा गणत ताजे जन्म को हुक्म पछाता, ना बिन से ना छूट जाए नानक रंग राता, बलावल महला पंजवा महा तपत ते पई शांत परसत पाप नाठे, अंधकूप में गलत ते थे काडे दे हाथे, होए हमारे साजना हम अब आए, होए हमारे साजना हम उनकी रेन, जन पेट तो होवत सुखी जी दान देन, रहाओ परा परबला लिखिया मिलिया अब आए, वस्त संग हर साध के पूर्ण आसाए, पै बिन से तै लोपे पाए सुख थान, दया करी समरथ गौर बसिया मन नाम, नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, कारण कारण प्रभ कर्म कर्म समरथ प्रभ हर अगम पार, बराबर महला पंजवा सोई मिलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना, कारने हार न बूझी आप गने बैगाना, दुख तदे जद विसरे सुख प्रवचित थापे, कीमत कही न जाइए ठाकर पर तापे, पेक तलीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चले संग चले कमाया, कारण कारण समरथ प्राप तेरी शरणाई, हर दिन सुरैण नानक जपे सद सद वल जाई, बलावल महला पंजवा जल टोबू हर दिन जल टोबू ए शीस कर पग पखलावू।

जिन टोलावू रहाओ अमृत गुण संत बोल दे सुन मने पिलावू ऊआ रस में शांत तृप्त होए बिखे जलन बुझावू जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गुण गाव तिन हर गावू करूं नमस्कार भगत जन मुतू।

गुरुमुख लावूं, बैठ उठत बैठत जपूं नाम, ए कर्म कमावूं। नानक की परब बेनती, हर सरण समावूं। बराबर महला पंजवा, ऐसा गसोई तरे जो हर गुण गाए, साध साध संगत कै संग बसे बड़भागी। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, परगट पई सब लो माहे सेवक गुरु सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचया गुर पय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिख सिलक प्रण की मोकी मोख अपने प्रभ पाया। मत कोई जानू अवर कुछ सब प्रभ कै हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बराबर महला पंजवा, बंधन काटे आप प्रभ होआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ता के नदर निहाल। गौर पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी प्या प्रभ त्या बन जोग। रहाओ औख दहार का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संगत मन तन हिते फिर दुख ना जापे। हर हर हर हर जपिए अंतर लिवलाई, किल विख उतरे सुध होए साधु शरण आई। संत जपत हर नाम जत ता की धूर बुलाई, महा मंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलाबल महला पंजवा, पै ते उपजे भगत प्रभ प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम पारात। गौर पूरा जिस पेटिया ताके सुख प्रवेश, मन की मत त्यागिए सुनिए उपदेश। निरहाओ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दतार, मन ते कबू न बिसरे सो पुरख अपार। चरण कवि रंग लगा अचरज गुर देव, जा को कृपा करूं प्राव ता को लावू सेव। नैद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कहू न विसरे प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा, तृष्णा बुझी ममता गई नाठे पै परमा, तैत पाई आनंद पया गौर कीने का धर्मा। गौर पूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल पया पाया सुख वीर। रहाओ सोवत हर जप जागिया देखिया विस्माद, पी अमृत पतासिया ता का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उधारे, सफल सेवा गुर देव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बराबर महला पंजवा, हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ, तान दबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास राख लिए, निंदक निंदा कर पचे जम काल ग्रसिए। रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाए, एक से आगे बेनती रव्या सर्व थाए। कथा परातन यों सुनी पलता की बाणी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत वचन नानक कहे परगट सब माए, प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिन को पौ नाए। बराबर महला पंजवा, बंधन काटे सो प्रभु जा कै कल हाथ,
अवर कर्मनय छुट गए राखू हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आशा परम बकार मोह इन माहे लवाना झूट समगरी मन वसी पार ब्रह्म न जाना परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम पारे बिकार मो इन माहे लवाना झूठ समगरी मन बसी पार ब्रह्म न जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी इन माहे जी तुम्हारे ज्यों तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम पारे कारण समरथ प्रभु दे अपना नाओ नानक तरिये साध संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजवा कबन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोनी मोया नानक नरक की रीत मन खुट हर तेरा नहीं बिसात तू महा उदमादा खरका पैखरू तौ छुटे जो ऊपर लादा नहाओ जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख का डाड सिमर नाही जोन दुख निलजे पाड़ हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद बीता पंज बटवारी उपजियो महाखेद नानक तेन संतन शरणागति जिस मन बस कीना तन तन सरवंस अपना प्रभ जन को दीना बराबल महला पंजवा उद्यम करते आनंद पया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार चारण कमल गौर के जपत हर जप हों जीवा पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहाओ जीव जंत सब सुख वसे सब कै मन लोच पार उपकार नित चतवते नाही कुछ पोच तन सुथान बसंत तन जय जपिए नाम कथा कीर्तन हर अंत कना सुख सहज विश्राम मन ते कदे न विसरे नाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कह सब कछ हाथ बराबल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया फन सुख माहे पाया सदा सिमर चरनार वैद शीतल होताया जीवत्या अथवा मोया कछ काम न आवे जिन ए रचन रचाया को तिसको क्यों रंग लावे रहाओ रे पराणी उसन सीत करता करे काम ते काडे कीरी ते हासी करे टूटा लाए गंडे अंडज जेरज से खेत खेत च उत्पूजा प्रभ की ए कीरत प्रभ की ए कैरत कैरत कमावन सर्व फल रविये हर निरत हम ते कछु न होवना सरन प्रभ साध मोह मंगन कूप आंद ते नानक गुर काढ बलाबल महला पंजवा खोजत मैं फिरा खोजू बन थान असल अछेद अभेद प्रभ ऐसो भगवान कब देखूं प्रभ अपना आत्म के रंग

रूप नरेखना पंच तत ठाकर अविनाश उस रूप संतन करे बिरले जोगी जोगी सार कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईसर सो अंतर सो बारे बिनसे तै परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण करमा बलाबल महला पांचवा जी जंत सब प्रसन्न पै देख सब प्रताप कार्य करमा कार्य उतारिया सत गुरु कर आहर आप खात खरचत निभत रहे गुर शब्द अखोट पूर्ण पई समगरी कब कब हूं नहीं टूट रहाओ साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार भक्त अराधे एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम तन सांचया जाका नहीं सुमार सरन परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड़ियाई नानक अंत न पाइये बेअंत गुसाई ब्रबल महला पांचवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभ कार्ज सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पै रास करतार पर करता वसे संतन के पास रहाओ विघ्न न को लागता गौर पाए अरदास रखवाला गोविंद राय पलतन की रास तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन वसे प्रभागम पार वस्त कुमावत सब सुखी कुछ ऊन न दिसे संत प्रसाद भेटे प्रभ पूर्ण जगदीसे जय जय कार सवे करे सच थान सुहाया जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया बिलाबल महला पांचवा हर हर हर अराध्य होये अरोग राम चंद्र की लक्तिका जिन मारिया रोग रहाओ गौर पूरा हर जापिए नित कीजे भोग साधु संत के वार ने मिलिया संजोग जिस मृत सुख पाइए बिन से वयोग नानक प्रभ संग नागती काटन नानक प्रभ संग नाग शरणागती कारण कारण जोग राग बलाबल महला पांचवा दो पते घर पांचवा एक मकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लिया ताप पाप सब मेटे रोग रोग शीतल मन पया गौरपुराया राध्या सगला दुख गया राखण हारे राख्या अपने करमया रहाओ बां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपाया ब्रबल महला पंजवा कर तार मस्तक थाप्या नाना थाप्या नाम दीनो दान सफल सेवा प्रार ब्रह्म की ताकि नहीं नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भक्तन की आन जो जो चितवे साध जन सो लेता मान रहाओ सरन परे चरनार वेद जन्म प्रभ के प्राण सहस सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान बलाबल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप राखण हार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव राज राम राम राज राम दास पर कीने सेव रहाओ सदा सदा हर त्याये कस बिघन लागे नानक नाम सलाहिए पै दुश्मन भागे बलाबल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिये मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस तूर ते जम भागे राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे तंत मानत न जोहिए तित चाख न लागे रहाओ
काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे आनंद मंगन रस राम रंग नानक शरण आगे। बिलावल महला पांचवा। जी जुगत बस प्राप कह जो कहे सो करना, पै पर सन गोपाल राय पो कुछ नहीं करना। दुख न लागे कदे तुद पार ब्रह्म चेतारे, जम कंकड़ नेड़ न आवई गुर सिख प्यारे। नरहाओ कारण कारण सम्राट है तिस जिन्ना ही होर, नानक प्राप्त नासी साचा मन जोर। बिलावल महला पांचवा। सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख उठाओ, विश्राम पाए मिल साध संग ते बोर न पाओ। बलिहारी गुरु अपने चरण वल जाओ, नंद सुख मंगल बने पेक्त मन गाओ। रहाओ कथा कीर्तन राग राग नाद तन ए बनियो सुआउ, नानक प्रभ सो प्रसन्न पै बाचित फल पाऊं। बिलावल महला पांचवा। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नाश। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास, कीरत नाम सिमरत रहूं जब लग कट सास। रहाओ मात पिता बंधव तू है तू सर्व निवास, नानक प्राप शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल महला पांचवा। सर्व सिद्ध हर गाइये सब पला मनावे, साध साधु मुख ते कहे सुन दास मिलावे। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुण कीन, जी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन। रहाओ पूर रेहो सर्वतर में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पांचवा। अरदास अरदास सुने दार प्रभ होए कृपाल, राख लिए अपना सेवको मुख निंदक चार। तुझे न जोहे को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ। रहाओ जीन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की वे नांतिया मैं तेरा जोर। ब्रह्मल महला पांचवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो नचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार अगणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पांचवा। गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल पै राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा का बड़ प्रताप। बिलावल महला पांचवा। तरत स्वाभि सफलता सफलतान पूर्ण।

0: साई कड़ी से लखनी सिमरत हर नाम रहाओ। परंगट पै संसार में फिरते पहनाम, नानक तिस्तर नागती कट कट सब जान। बराबल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत। बड पर तप चार्ज रूप हर कीनी दात। गुर गोबिंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम बड प्रताप आचार्य रूप हर कीनी दात। गुर गोबिंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुरदास। बुलाबुल महला पांचवा, मार मार जन में जन बिसरिया जीवन का दाता। पार ब्रह्म जन सेविया अनगिन रंग राता, शांत सहज आनंद घना पूर्ण प्रयास। सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणदास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जमी, थान तरांतर रव रहे नानक के स्वामी। बुलाबुल महला पंजवा, ताती वान लगी पार ब्रह्म शरनाई, जो गर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा पेटिया जिन वर्त बनाई, राम नाम औखा दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन राखन हार सब व्याध मिटाई, कौ नानक कृपा पई प्रभ पै सहाई। बुलाबुल महला पंजवा, अपने बालक आप रखियान पार ब्रह्म गुर देव, सुख सात सहज आनंद पै पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाया जवालिया जाका बड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कलतारी, मन वास्त फल दितियन नानक बलिहारी। राग बुलाबुल महला पंजवा, चौपते दो पदे घर सेवा एक मुकार सतगुर प्रसाद। मेरे मूण सरबनी ये ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए रहाओ। सोबत सेव सेव साध सेवू सदा करूं करताए, अबे दान पावू पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगाह अगाह गुण राती नैन दारस रंग लाए, हो करपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय बसाए। सब हूँ तले तले सब ऊपर ए दृष्टाए, अभिमान खोए खोए खोए खोई हूँ मोको को मेको को सतगुर मंत्र दराए। अतुल अतुल अतुल ना तुलिए भगत बचर कृपाए, जो जो सरन परयो गुर नानक अभे दान सुख पाए। बुलाबुल महला पंजवा, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नाम सकार डंडौत बंदना अनक बार बारे रहाओ। उठ तो बैठ तो सोवत जागत ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था तुझ ही आगे सारे। ओट मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवारे, जो तुम कहूं करूं सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनारे। बराबल महला पंजवा, सुनियत प्रभ तो सगल उदारन, मोह मगन पतित संग प्राणी। ऐसे मोह मगन पत चरनारे। बराबल महला पंजवा, सुनियत प्रभ तो सगल उदारन, मोह मगन पतित संग प्राणी। ऐसे मने विसारन रहाओ, सांच विख्या लै गहज कीनी अमृत मन ते डारन। काम करोध लोभ रत निंदा सत संतोख विदारन, इनते काट लिहो मेरे स्वामी हर परे तुम सारन। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਧਰਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨਿਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਥਾ ਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧਨ ਪੂਰ ਰਹੀ ਦਿਨਸ ਹਰ ਰਾਤ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਤ੍ਰੈਪਤ ਉਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਨੋ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਭ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਰਹਾਓ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਰਹਾਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰ ਚੰਨ ਸਭ ਹਰ ਜਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਰੀ ਰਾਮ ਰਸੈਣ ਆਤਮ ਪਰ ਆਤਮ ਤਰਾਪ, ਚਰਨ ਗਏ ਸਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਜਪੇ ਹਰ ਜਾਪ, ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਭਰਮ ਪੈ ਬਿਨਤੇ ਸਤ ਬਿਨਤੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਓ, ਗੋ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਬਾਲਕ ਰਾਖ ਲੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਥ ਦੀਨੋ, ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰਾਗ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਦੋ ਪਤੇ ਘਰ ਸਤਮਾ ਏਕਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ, ਤੈ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ ਰਹਾਓ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਜੋ ਪੇਖਿਓ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਵਡਿਆਈ, ਮਗਨ ਪਏ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਮਾਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਲਪਟਾਈ, ਆਲ ਜਾਲ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਜੰਝਾਰਾ ਓਬਿੰਦ ਨਾਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚ ਨਾ ਕੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ਏਕ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਏਕ ਬਿਸ ਥੀਰਨ ਏਕ ਸਪੂਰਨ ਏਕ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚੋ ਸੁੱਚੋ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚੋ ਸੁੱਚਾ, ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਕੌ ਨਾਨਕ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਆਪ ਤਹੇ ਜਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ ਮਚ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ਉਹ ਮੋਨੀ ਮੋਹਾਵ ਤਹੇ ਰਹਾਓ, ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਨੀ ਛੋੜ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਜਾਪਤ ਹੈ, ਓਰਜਿਓ ਓਰਜਿਰਿਓ ਇੰਦਿਰ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਵਿਖੇਟ ਖੋਲੀ ਖਾਵਤ ਹੈ, ਤਰਨ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਵਕ ਤਲੇ ਜਰਾਵਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੜ ਮੈਂ ਓਠ ਐਠ ਅਠੀਲੋ ਫੂਲ ਫੁੱਲ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੂੜ ਪੈ ਪਰ ਨਾਠੇ ਕੇਸ ਗਹੇ ਬੇ ਫੇਰਾਵਤ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਆਵੇ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਰਿਓ ਮਦਮਾਵਤ ਹੈ, ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਚੋਗ ਵਿਸਤਾਰੀ ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਫਾਵਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕਹੁ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਆਵਤ ਹੈ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਮੋਲੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੋ, ਮਨੇ ਦਾਰੋ ਚੀਤ ਚਿਤਾਵੋ ਜੈਸੇ ਪਾਨਤ ਬੋਲੀ ਰਹਾਓ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰੇ ਬਤਾਇਓ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਚੋਲੀ, ਪੈਰ ਮੁਖ ਲਾਗੋ ਜਾਉ ਵਡਭਾਗੋ ਸੁਹਾਗ ਹਮਾਰੇ ਕਤੂ ਨ ਢੋਲੀ ਡੋਲੀ, ਰੂਪ ਨ ਧੂਪ ਨ ਗੰਧ ਨ ਦੀਪਾ ਓਤ ਪੋਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਮੌਲੀ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਰਵੀ ਸੁਹਾਗਨ ਅੰਤ ਨਿਕੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਖਟੋਲੀ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਈ ਜਬ ਤੇ ਭੇਟੇ ਸੰਗ ਦਿਆਰਾ ਤਮ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਪਈ ਰਹਾਓ, ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਿਹੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਦਈ, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल कई। सत संतोख दया धर्म सच संतन ते मत लई। कौ नानक जिन मनो पछाणिया तेन को सगली सोजी पई। बिलावल महला पांचवा। किया हम जी जंत विचारे बारण न चाकू एक रोवई। ब्रह्म महेश सिद्ध मन इंदिरा बे अंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिए कुछ कथन न जाई जय जय देखा तै रिहा समाई। रहाओ जय जय महाप्यान दुख जम सुनिए तै मेरे प्रभु तू है सहाई। सरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। आगम रूप अवनाशी करता पतैत पवैत इक निमख न जपिए। इक निमख जपाइए अचरज सुनियो प्राप्त पेटले। संत चरण मन करता पतैत पवैत इक निमख निमख जपाइए अचरज सुनियो प्राप्त पेटले। संत चरण मन लाइए कैत विधिये कत संजम पाइए। कौ सुरजन कित ज्योति त्याइए। रहाओ जो मनुख मनुखी सेवा ओ तिस की लई लई फुन जाइए। नानक सारन सारन सुख सागर मोह एक तेरो इक नाइए। लाबल महला पांचवा। संत सारन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज से छूट परी। रहाओ सहज कर कनो आनंदा गौरते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस वर्ण सासू गौर पूरे में और तपत करी। देखियो मोहन सब कह संगे ऊन का काऊ सगल परी। पूरन पूर रिहो कृपा निद कौ नानक मेरी पूर परी। बिलावल महला पंजवा। मन का मन किया कहता हूँ किया कहता जान परवीन ठाकर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाओ अन बोले को तू ही पुजाने। जो जियन में होता रे मन काहे कहाँ लो डाके जो पेक तो ही संग सुनता। ऐसो जान पे मन आनंद आन न भीयो करता। कौन नानक गुर पै दयारा रंग न कप दूंगा। तबला बरमंदा पंजवा। निंद कहते ही चार परिये ये निशानी सुनो तुम पाई ज्यो कालर पीत गिरिए। राव जाऊं देखूं छिदतों निंद को माए परो देख दुख परिये। आठ पैर चित वे नहीं पहुंचे बुरा चितवत मरिए। निंदक प्रभु पुलाया काल मेरे आया हर जन सियो सुदाद उठरिए। नानक का राखा आप प्रा स्वामी क्या मानस बपरे करिए। बिलावल महला पंजवा। कैसे काहे फूल परे करे करावे मुकुर पावे पेख तसुन तसदा संग हरे। रहाओ काच ब्यंजन कांचन छाड़ बैरी संग हित साजन त्याग खरे। होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया माए लपटाए जरे। अंध कूप में परे ओ प्राणी पारम गवार मोह बंद परे। कौ नानक प्रभ होत दियारा कुर पेटे काहे पेटे काढ़े बां भरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना पै नंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको कोर दीना। रहाओ नानक ते सब पई सियानप प्रभु मेरा दाना दीना। हाथ दिए राखे अपने को पांव न करते कुछ दीना
1: कृष्ण की खीना। बल जाओ दर्शन साधु के जय जे प्रसाद हर नाम दीना। कहो नानक ठाकुर।

मन जो जो तम करो सोई पल मानो मन ते छूटे सुलभ मान का नानक ता की सुनाई जा किया सगल जहान बलामन महला पंजमा का मानता है अंतर प्रवाही हर गुण गावत पर उपकार नित्य तिस रसना का मूल किसनाही रहाओ कूल समाओ दरे खन की तर जन्म जन की मल्लाही सिमर सिमर स्वामी कृप अपना आनंद सेती विख्या बन गाही चरण प्रभु के हुए गोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर तांगे नानक मन लागै है ताई बलावन महला पंजमा धीरो

नाथ सुलही ते नर राख सुलही ताका हाथ कही ना पूजे सुलही हुई मुआ ना पा कराऊ काड कुठार खसम सिर काटिया खन में हुए गया है खाक मंदा चितवत चित्रत पचिया जन रचिया तिन दी नीना थाक पुत्र नीत धन कृष्ण रयो सो छोड़ गया सब पाई साक का नानक।

प्रताप दक नंद प्रवेशा त्रिथिया त्रिशन बुद्धि मन तन सच तराप अनाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भक्त छलक पैपन स्वामी गुण गावत नान कलाप बिलावन मल्ला पांजमा जैसे उपजाति किसान पार परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ भरपूरा पेट मन बागी अंतर जमी सूड सुजान हाथ दिए राखे करे अपने वड समर्थन मान्या को मान परम पै मिंस गए खन पीतर अंधकार प्रगटे चरण चरणान सहसा सरा दे नानक सदा सदा जय करवान

जी जयंत के कर प्रतिपाला आठ परा तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभाते लावण महला पंजमा तन तन जो मन चलत गया राम नाम का पुअपन नकीनो करत बकार निष्फुर पया रहाउ अनक प्रकार पूजन न दिखाते मुगदंता का सीना खीन कया मेरी मेरी कर कर मुठो पाप करत ना परी दया महाधिकार को दुख सागर तिसने प्राणी गलत तया शरण परे नानक स्वामी की बाँ पकड़ प्रभ काढ़ लिया लामन महला पंजमा अपना प्रवाया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे भाई मीत रहाउ गई ब्याद।

జ్యోతం కరుసు విఫల్మనే పావన్ దురిద్దా దూరితరు నాణకే ప్రసమీదాతే ససంకలేమో ఉదరు బ్రాహ్మణ మహల్లా పంచమా ऐसी दीख्या जन समंगा तुमरु त्यांत मारु रंगा तुमरी सेवा तुमरे अंगा रहा जन की टैर सुबाखन जन से उठन बैठन जन के संगा चरन जन चर राज मुख माथे लागी आशा पूर्ण आनंद तरंगा जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की दूर की ओ मंजन नानक जन्म जन्म कह हरे कलंगा ब्राह्मण महला पंजमा ज्यो पावे तो मही प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तो

सिमर नहीं आप तो फिर मद मावत बिखिया रहता सन जैसे ही ओद देहात देख मुहावत पाप कमात बुड़े से शरण दुख पंजन पुरख नरंजन साधु संगत रमन जैसे केसर कलेश नाथ अगा अकाग खंड नानक जीत दर्श दिसे राग बिलामन महला पंजमा दुपदे कर नौ महिंकार सतगुर प्रसाद आते ने लहे जब ते संत मारी आए तब ते दुख गए रहाऊ साजिब मान।

अनरस नहीं चाहे एक हर लय लाहे अंते टूटिए रखते छुटिए मन हर रस टूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चन हे राग बिला मन भला न मान दूप देख का सतगुर प्रसाद दख हर तहर नात चन जाम लगन का जे जिस सिमरत अमृत पहि जी जानो रहाओ गज की

का दशमाई कुंकार सतगुर प्रसाद नेक्ट वसे देखे नसे देखे सब सोई गुरु मुख वेला बुझे कोई विण पै पया पद न होई सब दर रेस दस कोई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरु मुख पाव सिरफ ससमान रहो ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने तेरे न कोई बंस रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गते होई सची रत साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई नाव भूलो सौन कोई मन माया बंधु सर जाल कड़ कड़ व्याप रहो बिख खनाल जो जो अंज सो दिसे काल काग सी दुरे समाल सो ज्ञानी जन सर्द लवलाई मन मुखों में पत गवाई आपे करते भगत कराई गर्म खाते दे वड़ियाई रहना हंदारी निर्मल जोत ना बिना झूठे कुछ कशोत वेद पकारे भगत स्रोत सुन सुन माने वेखे जोत शास्त्र सिमरत नाम दराड़ मंग गर्म शांत उत्तम कराम मन मग जोनी दुख सहामं बंधन टूटे ना बसामं मने सच्चे मने ना सची पत पूजा किस वेखा ना ही को दूजा ए देख पावे ए

ये वर्षे वते नहे पदार्थ हृदय नाश दर्थ सची दरगाह पूछन होई माने हुक्म सीधे दर्शोई सतगर मिले ता तिसको जाने रहे हुक्म पिछाने हुक्म पिछाण सचे दरवा।

हर पाठ पढ़िए रहो। एक गिरु दस द्वार है जाके है नस तस्कर पंच चूर लगे धर्म सब हर ले जाने मन मुख अंदले खबर न पइए कंचन कोट बहुमानक पड़िया जागे ज्ञान तलब लइए तस्कर हेरू आई लुकाने गुर के शब्द पकड़ बंद पइए पैया हर हर नाम पोत बहुत खेवट शब्द गुर पार लंघाइए जम जगाती ने न आड़े ना गो तस्कर चोर लगाइए हर गण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लइए गुरमुख मनु आए कर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मंत्र ते शरण बाणी गुरु शब्द सुनिए सुन सुन आत्म देवे पीने हर रस रस राम गोपाल रवैया त्रैगुण माया मोहि व्यापे तुरिया अगुण है गुरमुख लैया एक दृश्य सकर जाने नदरिया वे सब ब्रह्म सरैया राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया नानक दीन दयाल पे है भगत पाई हर नाम सुमैया बिलावन महला चौथा हर हर नाम कीर्तन जग त्याओ हर चंदन वास सुगंध गंधैया गंधैया मैं सत संगत परम पद पाया मैं है निबला संग हर गुइया जब जगानत जगदीश बसैया सन परे से जन उबरे जो प्रहलाद उदार सुनैया रहाउ पार अठार मंग मैं चंदन उत्तम चंदन नित सब चंदन हुया साक्त कूड़े सुब सुख हुए मन अभिमान बिछड़ दूर गैया हर गत मित करता आपे जाने सबत हर हर आप मनैया जिस सतगर पेते सो कंचन होवे जो तर लिखया सो मिठे न मिटैया रत्न पदार्थ गुरमत पावे सागर तलत भंडार फुलैया गुर चनिक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम परम बराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते पावन पावनी गैया बार बार खन खन मल कहिए हर पाल न पावे पर परहिया शास्त्र भेद पर का पुराण उपकारे धर्म करो खट कर्म गदरडैया मनमुख पखंड परम भगुते भगुते लोभ ले ना पर बुढ़ैया नाम जपो नामे गत पावो सिमरत सतर नाम दरडैया आमे जाए त निर्मल होवे दुर्मुख पसे परम पद पैया ए जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत विजाए राजे जित पावे तिस राह चलैया पांबला मन महला चौथा गुरमुख अगम गोचर त्याया हां बल बल सतगुर सत परखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम सुनैया जनकी जेगा नाम टिकैया सतगुर की तर लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लैया रहाउ ए शरीर कर्म की तरती गुरमुख मद मथ मथ तत कढैया लाल जिवे नान प्रगस्या भांडे पाओ पेत अय्या दासन दास दास हुए रहिए जो जन राम भगत नज पैया मन बदर पतरियो गुर आगे गुर प्रसादी में कथ कथैया मन मत माया मोहि व्यापी मन तृष्णा जगत दिखैया।

चीत तैनाही नरक निवास नत सिवर प्रगुण सास ताते जमना ते जमना तिखे नैन सुन मोहि अनहत अनहत दैन हर शरण सूर गोपाल प्रभ भक्त वसी दयाल हर निगम लह न पे पीव नै नित करे मन जन सेव।

एकोल सुका तो दार संसार उतरे उतर सपार हर चरण बोहित ताए मेरे सासंग जस जाए हर पैज रखे मरार हर नानक शरण द्वार बिलावन महला पहला तिथी वार दास जात इकुंगा सुख दुर प्रसाद एक मिंक ओंकार निराला मन जोनी जात न जाला बिम गोच रूप न रेख्या खोजत खोज कर देख्या जो देख दगावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई जप्या जब जापो

मनसा चमक सचु न पाई सज निशाने ढाक न पाई अष्टमी अष्टमी अष्ट अष्ट सैद बुद्ध साधे सच नहीं है कि

सच मेर न लागे परम पौपागे बिलम न तू पिसकाचे लागे ज्यो तागा जगे वे जानो अस्थर चीत साच रंग मानो एकता एक दासी एक रिरे वसावे हिंसा ममता मोहे चकावे फल पावे बरत आत्म जीने फखंड राज तत् नवीने निर्मल निरहार निरहार न है केवल सुचे सच्चे न लागे मल सुचे निर्मल निराहार न है केवल सुचे सच्चे न लागे मल जा देखो तै इको एका होर जियो पाए वेको वेका फलो हर किए फल जाए रस कस खाए सद गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमुख सच कमाए द्वादश मुंदरा मना वा तूता है नस जागे कबू न सूता।

वती बकरे ने कामाज पजाप जके मुख नाम तीन पवन नई को जाने सब सुच संजम सज पछाने तेरस तरवर समुद किनारे कनारे अमृत अमृत मूल मैं डर जाने तख्त नवास सच मन पाने ज्योतिष चौथे थाम लह पावे राज तामस सत्कार समारी सिर कह कर सुर समारी जोग जत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाये खंड ब्रह्मंड।

पले पाए पले पाए अगम गोचल ख्यान जाए गुरती शब्दा दया समाए मंगल माया मोयो पाया ते सिर सिर संदे लाया आप बजोए आप बजाए।

देवनहार देवनहारे को जयकार, वीरवार वीर परम पलाए, प्रेत भूत सब दुजे लाए, आप पाए कर वेखे वेखा, सबना करत तेरी टेका, जी जान तेरी चरनाई, सो मिले सिसले मलाई, शुक्रवार पर रया समा समाई, आप पाए सर कीमत पाई, कर्म को वे जो करे विचार, सच संयम करनी है कार, भक्त ने कृपा नितरा पत पूजा, बिन बुझे सप है दूजा, शनिवार सुन सास विचार, हमें मेरा परम संसार, मन मकंदा पाव है दूजा, सिंचर वर्षों सात हमें मेरा परमे संसार, मन मकंदा दूजे पाए, जम दरबदा चोटा खाए, कर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी सच सलाए, सतगुर सेवे से वड़ पागी, हमें मार सच लेव लागी, तेरे रंग राते

कर्तार दिशरंति दिशंसार आमागण किया कर्तार नित्यं साचरया कर्तार नानिंगर्म बुद्धि गोचर विचार बलामन महला तीजा

पाणिया जग से लोन अड़िए बोले गुरबानी राम जन सुन का मनिया हाड़ी अकथ कहे हानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को गरला गुरमुख बुझे वो शब्द समाये आव गवाए तरबन सूजी सूजिए अरे अतीत परंपर राता सच मन गुण सारिया ओम पूरिया सब ठाई नानक तारिया मैर बुलाड़िए ते भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सिज देही राम मन मारी जे सब सी जे तरै

हर प्रभावे तू करे हर रंग हर जाते राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर तरते राम मानस जन्म हर पाए हर रावण मेरा राम गरंक मिल सुहागनी रंग हो कनेरा राम जन मानस जन्म न पाया तन पागा मेरा राम हर हर हर हर हर राख प्रव नानक जन तेरा राम घर पूरे हर प्रभ दरडाया मंत्र रंग तीना राम भगत।

अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागी राम जन नानक हर प्रपाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लहलाई राम ज्ञान डेरा कटिया ज्योति प्रगटियाई राम जन नानक नाम धर है हर हर न समाई राम हर हर हर धन हर प्र प्यारे राजे जा हर प्र पाई राम अखी प्रेम कसाई जो बालक समाई

मां शांति सुंकार सुखदर प्रसाद मंगल सज तया पर अपना गया राम बनासी वंशनिया मन उपजा चाया राम मन फरीद लागे वड्डे पागे कब मिलिया मिले पूर्ण पते सहज सुनाये गोविंद पाइये दे सुखिए हुए मते डैन रैन ठांडी करूं सेवा पर कमन जगती पाया बनवंत नानक कृपा लयो मूल लड़दाया पया समा हड़ा हर तन सहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाया राम मिले संत प्यारे दया तारे कथ कथ विचारो एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रव कर बेनती मिल हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा।

मन पागी फल से ठग पाई मुहे अनंत कथ मन तावे मनवंत नांत मर संग सजन अमर पदवी पावे दुश्मन दुश्मन तई पे गुण अविनाशी राम कर गय पूजा पूजा गई कट जम की फंसी राम गह पूजा लेनी दस निकिनी अंकर दूत जानिया मलन मोए बकान नठे दिस निर्मराया दृष्टारी मन प्यारी मां धर्म तनासी बनवंत नानक पय निर्मल प्र मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जा लका जल हुआ राम ज्योति जो तरली संपूर्ण थी राम ब्रह्म जी से ब्रह्म सुनी एक एक वसानी आत्म सारा करने हारा प्रभु बिना नहीं जाने आप करता आप भुगता आप कारण किया बनवंत नानक से ही जाने जन हर रस किया बिलामिन महला पाई मां शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वसाओ सखी असी करका मंगल गावे तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्रीतम पावे ताजमान मोहे बकार दूजा सिर एक नरंजनो लग चरनी सन दे।

तू सर्वव्यापी तुम समसर नाहि दयाल मोहे समसर पापी रव बलावल नत उठ कोरी गागर आन लीपत जियो गा जियो गयो ताना बाना कछु ना सूजै हार हार रास लपटयो हमारे कुल कौने राम कहेओ जबकि माला लई न पूते दबते सूत सुख न पयो राओ सुनो जठानी सुनो दरानी अचार जय एक भयो सात सूत न मुंडिये खोए एहि मुंडिया क्यों न मोयो सर्ब सुखा का एक हार स्वामी सो गौर नाम दयो संत प्रहलाद की पै जन राखी अरनाक्ष नक बिदरियो करके देव पुत्र पितर की जो जोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लय उदरियो बिलावल कौ हर समान नहीं राजा भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दवा जराओ तेरो जन होए सोए कत डोलै तीन भवन पर शाजा हाथ पसार सकै को जन कौ बोल सकै नांदा जा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजी अनहत बाजा बकह कबीर सन सह ब्रह्म चूको तू प्रहलाद है बाजा बिलावल राख ले हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत न किन्ने हाउ अभिमान टेड पगरी राव अमर जान सांची मान सांची काया ए मिथ्या मिथ्या काची गगरी जिन नवाज साज हम किए दिसें विसार अवर लहरी लगरी संदक तोहे साध नहीं कहिया हऊ शरण परे तुमरी पगरी कह कबीरे बिनती सुनिया हऊ मत काल जम की खबरी बिलावल दर माधे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै को लिखवा रहाउ तुम धन धनी उदार त्यागी सरवणन सोनियत सुजस कुमार मांगो काहे रंग सब देखै देखो तुम ही ते मेरो निस्तारु जय देव नामा बिप सुदामा तिन कौ कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरथ दाती चार पदार्थ देत न बार बुलावल डंडा मुद्रा खिंसा आधारी प्रम कै पाए भवै पेख तारी आसन पवन दूर कर बबरी छूड़ सियान पुनित हर पज बबरे आओ जे तू जा चह सो त्र भवन भोगी कह कबीर कह सो जग जोगी बलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण विसारी गिनचत प्रीत न उपजै जन काओ जन कहाँ करें बेचारे आओ त्रिग तान त्रिग धान त्रिग ही माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी गए इस माया का उदृढ़ कर रख बंद हाथ बचनी क्या खेती क्या लेवा देवी पर पंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत रघुते आया काल निधाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आचे कमल अनूप परम जोत पर खो तमा जा कह रीख न रूप रे मन हार भाज ब्रह्म तजु जग जीवन राम रहाऊ आवत कछु न दिसई नह दीज दिस जात जह उपजै बिनस दही जैसे पुरपन पात मिथ्या कर्मा या तजी सुख सहज विचारू कह कबीर सेवा करो मन मंज मरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लेवल आगी जीवत सुन समान्या गुरसाखी जागी रहाऊ काजी ते कांसी ते तन उपजै तुन कांसी जाई कांसी काट फूटी पंडता तन कहा समाई त्रिकुटी संत मैं पेखया घट हूँ कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माह त्यागी आप आप का आप ते जानिया तेज ते समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन मन बुलावल चरण कमल जा कर दस सो जान क्यों डोला देव मन सब सुख नौ निध ता कैसा सह जस बोले देव राउ तब एह मत ज्यों सब मह पेखै कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटकै लै नरजा मन तो लै देव जह जाय ताई सुख पावै माया तास न डुल झूलै देव कह कबीर मेरा मन मनया राम प्रीत कियो लै देव बिलावल बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार गुर प्रसाद सफल जन्म मोह कौ गुर दीना मोह कौ गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान अंजन मुख गुरु दीना राम नाम बिन जीवन मन ही न राव नाम देव सिमरन कर जाना नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समान।

0: राम करी महला पंजवा कारण करण करिए सर्ब व्रत पार ही महला लख पार खोद खुदाई बड़ विश्वमार ओम नमो भगवंत खाल कमराब रहे आ सर्वठाई ओम नमो भगवंत गोसाई खाल करब रहे आ गो सर्व ठाई राव जगन्नाथ जग जीवन माधो भग पाओ पंजन रदमाही आराधो लेखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मकंद मेहरबान मौला तुही एक पीर पैगंबर सेख जलांका मालक करे हाक कुरान कतेव ते पाक नारायण नर हर दयाल राम तराम काट काट आधार वासुदेव वासुद सब ठाई लीला कछ लखी न जाई मेहर मेह मेहर दया कार करने हार भगत बंदगी दे सजनार कहो नानक गोर खोए भरम एकोला अलह पार ब्रह्म ब्रह्म कली महला पंजवा कोट जन्म के बिनसे पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महा विकार तन ते सब नसे गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रभु पूर्ण ज्योति ज्योत समाणी रहाओ तृष्णा पूख सब नासी संत प्रसाद जपया बनासी रैण दिनस प्रभु शिव कमानी हर मिलने की यह निशानी मिटे जंजाल हुए प्रभु दयाल गुर का दर्शन देखने आल परा पूर्वला कर्म बने आया हर के गुण नित सुनाया हर के संत सदा प्रवाणु संत जना मस्तक निशानु दास की रेण पाए जे कोए नानक तिसकी परमगत हुई राम कली महला पंजवा दर्शन कौ जाइए कुरबान चरण कमल हृदय तर ध्यान धूर संतन की मस्तक लाए जन्म मरण जन्म की दुर्मत मल जाए जिस भेट त मिटाए महान पार ब्रह्म सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाउ गुर कीरत जपी हर नाउ गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी समसर सुख दुख कदे न व्यापै तृष्णा भूख मान संतोख शब्द गुर ग्राजे जप गोबिंद पढ़ दे सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शंद गुर चरणी जा कमन लागा नानक दास तिस पूरन पागा
1: किस पर वासे जिसे कवन मूल मुगर तेरा संगीत है मैं कवन वाम संगीत से गत नहीं जाने पंच पटवार से मीत कर माने सोगर से जित उदरों मीत गुण गोविंद रवे दिन राति साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहान अहंकार अरवाद तृप्त न आवे विख्या साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाए दुखर माया काम न आवे सुखार कमावे आप जापे ही खावे राखन क्यों दूसर नाही कोए तो निस्तरे क्यों कृपा होए पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास क्यों कीजे दान कर कृपा प्रभ गत हर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजवा पहलो के सुख पाया नहीं बेटक धर्म राया हर दर्गो शोभावंत फुन गर्भ नहीं बसंत जानी संत की मित्राई कर कृपा दीनो हर नामा पूरब संजोग मिलाए रहा गुर के चरण सित लागा तन तन संजोग सभागा संत की दूर लागी मेरे माते किलविक दुख सगले मेरे लाते साध की सच टहल कमानी तब होवे मन शुद्ध परानी जन का सफल दरस दीठा नाम प्रभ का गड़गड़ बूठा मीठा ने सब कल कलेश जिसके उपजे समय परवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बखसंद राम गली मल्ला पंजवा गयो क्यों चारे सारो सार डूल सऊदी तान लख हुआ मूल बकरी क्यों हस्ती प्रतिपाले अपना प्रभ नजर निहाले कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे वरण न साख्यो बहुगुण तेरे रहाओ जिस मास न खाए बिलाए महाकसाब छुरी मट पाए सट पाए करण हार प्रभ हृदय उठा पाती मछली का जाला टूटा सूखे कासत हरे चलूल उछल फूले कमल अनूप अगन निवारी सतगुरु देव सेवक अपनी लावो सेव अकीर्त कना का करे उधार प्रभ मेरा है सदा दयाल संत जना का सद सहाय चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवा पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिघारी लही निवार तेनावत आवरत की चुकी रेत साध संग चुको पे फेर सिमर सिमर जीवा गोविंद कर कृपा राखो दास अपना सदा सदा साचा भक्सेंद्र रहा राज गहे त्रिन पाप सुमेर जप जप नाम पुजे प्रभु पै अनद रूप प्रगटयो सब तान प्रेम भगत जोरी सुखमान सागर तरयो बाचर खोज खेद न पायो नैफुन रोज सिंध सिंध समाए गुटके माहे करन हार क्यों किछ अचरज नाहे जो छुटयो जो जाए प्यार पाड़ियो तो नदर नियाल पाप पुन हमरे बस नाही रसक नानक गुन गाही राम कली महला पंजवा नातन तेरा कामन तोही माया मोह व्याप्या तोही कदम करे डागर जो खेल अचिंत जाल खाल चक्र फेल हर चरण कमल सर नाही मना राम नाम जब संग सहाय गुरमुख पाव साच तना रहा उने काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकरार जेरे ते ताही गाफल संग न दसुह जाई तरत तो अनिक छलब जाने कौडी कौडी क्यों खाक सिर साने जिन दया किसे न चेते मूल मित्रिया लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पहे दयाल अहमन होया सादरवाल हस्त हस्त कमल लड़ लीनो लाही नानक साचे साच समाही राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाई निर्भो पहे गोविंद गुण गावत साज संग दुख जाई रहा जाके राम बसे मन माही सोजन दूतर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुरपुर करे सोदास आदेशा काहे करे जन्म मरण की चुकी कान पूरे गुरु पर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल सो दर्शन पाए जिस सोहे दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करे साध संग सो पवजल करे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजले साचे दरबारे अनद करो सद सकल विकार नानक हर जब उतरो पार राम कली महला पंजवा इंदन ते बेसन तर भागे माटी क्यों जल धै दिस त्यागे ऊपर चरण जले आकाश कट मै सिंध कयो प्रकाश ऐसा समृत हर जीव आप निमक न बिसरे जी भक्तन के आठ पहर मन का क्यों जाप रहा उपत में माथन पाचे दूध मैं लू कीनो साबन सुधु तै भय निर्भो तरता फिरे हुंदी क्यों न हुंदी हीरे देही गुपत भी देही दीजे दीसे सगल साज करत जगदीसे थगन हारत अनंत दगदा अन्न थगदा थागे बिन वखर फिर उठ लागे संत सभा मिल करो विख्यान सिमरत सासद वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोई नानक ताकि परमगत होय राम कली मल्ला पंजवा ज्योतिष पावे सो किया सदा सदा हरनी हर की सरनाई प्रभ बिन नाही आन बिया राह पुत्र कलत लक्ष्मी जिसे अहमन इनमन इनमें किसु न संग लिया बीते सज औरी खाए पुलाना माया सुंदर माया मंदर त्याग गाया निंदा कर कर बहुत विकूता गर्भ जोन में कीर्त पाया पूर्व कमाने छोड़ो नाही जमदूत गृहस्थ महाप्याय बोलो झूठ कमावे अबरा त्रिसन न बूझे बहुत हरिया असाध रोग उपजया संत दुखन देह विनाशी महा खाया दिनों बिने वाजे दिन ही साजे आपे किन संत जाया नानक दास कंठ लाहे राखे कर कृपा पार ब्रह्म माया रब काम कली मल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाय जाके सिमरन बिरता न जाय रहो दर्शन पेखत होए निहाल जाके दूर काटे जब जाल चरण कमल बसे मेरे मन के रारस वारे सगले तन के जस के मस्तक राखो रात प्रभ मेरे अनाथ को नाथ पति सुधारण कृपा दिधान सदा सदा जाए कुर्बान निर्मल संत दहेज सुदान तजो विकार बिनसे अभिमान एक कहे आए तिहाये साध के संत पाप विनाशे नाम के रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कटकट कर रब रया गुणतास दरस देहे तारे प्रवास नित नानक सितवे सच अरदास राम राग राम कली मल्ला पंजमा कर दूजे चुप दे क्यों का सदगुर प्रसाद गायो राम के गुण गीत नाम जपत परम सुर पाइये आहा गौन आवा गौन मिटे मेरे मीत रहा गुण गावत होवत बरगास चरण कमल में हुए निवास सत्संगत माए हो आधार नानक पवजल उतरता पुत्रस पार राम कली मल्ला पंजमा गुरपुरा मेरे गुरपुरा राम नाम जप सदा सुखेले सगल बिना से रोग कूड़ा रहो एक आराध्य साचा सुई जाकी ਸਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ, ਨਾਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਦੁੱਖ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਭ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਪਤਾ ਜਸ ਜਾਪ ਜਪ ਜਾਪ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋ ਹੈ ਆਪ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਜੈ ਕਿਉਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਰ ਨਿਹ ਨਮਨਸਾਰ, ਜਲਨ ਜਲਦ ਬਸੁਦ ਗਰਗੰਗ, ਏਕ ਏਕਨਕਾਰ ਰਾਹੋ ਹਰਨ, ਕਰਨ ਪੁਨ ਪੁਨਹੋ ਕਰਨ, ਮਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਨ ਹਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਨਾਮ ਹੀ ਰੂਚ ਮੂਚ ਆਪਾਰ, ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਤਿਆਗ, ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਚਲੇ ਕਨਿਕ ਕਾਮਨੀ, ਰਹਾਉ ਭੰਡਾਰ ਵਿਰਭ ਅਰਬ ਪੇਖ ਲੀਲਾ, ਮਨ ਸਧਾਰੇ ਮਹਿ ਸੰਕਾ ਰਾਮਾਨੀ, ਰਾਮਨੀ ਸੁਤ ਕਲਤ ਪਾਤਮੀ, ਤੁਰਜੋ ਪਰਿਓ ਪਰਮ ਮੋਹੇ ਐ ਬਿਰਖ ਸਮਾਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ, ਨ ਸੁਖ ਸੰਤ ਬਹਾਵਨੀ, ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਲਾ ਅਠਵਾ ਤੀਪ ਦੇ, ਰੇ ਮਨੂਟ ਲਹੇ ਹਰਨਾਮਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਮੁਖ ਨਾਮੇ, ਪਹਿ ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਰਹੋ ਬੜਭਾਗੀ ਤੈ ਜਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਏ ਹੈ, ਖੋਏ ਕੇ ਫੁਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਵੇ, ਅਜਾਮਲ ਕਿਉਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧਾਈ, ਜਾਗਤ ਕਿਉਂ ਜੋਗੀਸਰ ਬਚਤ, ਸੋਗਤ ਚਿੰਨ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਵਿਦਿਆ, ਪਰਮ ਕਿਉਂ ਗਾਤ ਗਜ ਕੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਿਓ, ਅਬੇ ਦਾਨ ਕਹਿ ਦੀਨਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਅੱਠਵਾਂ, ਸਾਧੋ ਕੌਣ ਜੁਗਤ ਅਭ ਕੀਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਮਨ ਪੀਜੇ, ਰਹਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਜੇ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਜਗ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਪਾਵੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਬਹੇ ਪਹੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਜਨ, ਤਬ ਹੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤੈ ਕੀਏ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਰ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਮੈਂ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਉਰਤਾਰੇ, ਜਮਖੋ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਰਹਿ, ਉਪਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੇ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧਲੇ ਹੀ, ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਅਵੁਦ ਕਟੇ ਦਿਸਵਾਸੁਰ, ਬਿਖਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇਹੀ, ਰਹਾਉ ਕਰਨਾਪੋ ਬਿਕਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਪਨ ਅਗਿਆਨਾ, ਬਿਰਧ ਪਏ ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਉਰਜਾਨਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਹਿਰ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਾਈ, ਮੁਕਟ ਹੋਤ ਨਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਹੀ ਗਾਹੇ, ਮਾਇਆ ਕੋਮਦ ਕਹਾ ਕਰਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੱਤਾ ਮਨ, ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਤ ਸਹਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜਿਓ ਸੋਏ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਜਿਨੇ ਅਰ ਕਪਤ ਰਹੇ, ਸਾਤਰਤੀ ਸੋ ਪਵਨ ਚਲਾਰੇ, ਜਗ ਜਗ ਖੇਲੇ ਖਾਬ ਕੈਸੇ, ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ, ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨਾ ਕਰੋ ਟਿਆਨਾ, ਕਲ ਲਖਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ, ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਨਾ ਆਵਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਰਥ ਪਸਣਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਕੋ ਸੰਤ ਚੇਤੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਚੀਜੇ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਇਨ ਲਹੇ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਨ ਇਹੀ, ਜਿਸ ਸਿੱਖਦਾਰੀ ਤਿਸੁਰ ਖੁਆਰੀ, ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਦਾ ਤੇਹੇ ਡਰਨਾ, ਜਾ ਸਿੱਖਦਾਰੇ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ, ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਰੱਖਿਓ ਮਰਨਾ, ਰਾਤ ਗੁਨਾਹ ਕ ਲਗਾਈਏ, ਤਹਿ ਜੁਬ ਕੇ ਰਾਹ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੇ ਗੁਣ ਵਿਹੇ ਨਾ ਪਾਵੀਏ, ਰਹਾਉ ਕਲ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਨਿਬੇਰ ਸਰਾ ਨਿਬੇਰੀ, ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਅਖਰ ਬਨ ਕਰਮੀ ਕੀਰਤ ਲਾਇਆ, ਪਿਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ ਸਤਬਿਨ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਬਿਨ ਕਾਹੇ ਜਨਹਿ, ਨਾਵੋ ਤੋਵੋ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵੋ, ਸੁਚ ਬਿਨੋ ਸੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਕਲ ਪਰਵਾਨਕ ਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੇਖੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਪਿਆਗ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਏ ਉਪਰ ਕਰਮ ਨਾਹੀ, ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਹੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਦ ਪਰ ਬੋਧੀਏ ਮੜੀ ਵਧਾਵੇ, ਆਸਨ ਪਿਆ ਕਹੇ ਸਚ ਪਾਵੇ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਕਾਮਨ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਨਾ ਅਵਗਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ ਰਿਓ ਦੁਬੀਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਗੇ, ਕਰ ਕਰ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਰਹਾਉ ਗਾਓ ਗੀਤ ਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹੋ ਆਪ, ਕਿਉਂ ਲਾਗੇ ਨਵਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛਿਆ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਇਆ, ਪਸੰਦ ਚੜਾਹੋ ਕਰਿਓ ਪਖੰਡ, ਮਾਇਆ ਮੋਸਾ ਹੈ ਜਮਦੰਡ, ਫੂਟੇ ਖਾਪੜ ਪੀਕ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੰਧਨ ਬਦਿਆ ਆਵੇ ਜਾਹੇ, ਬਿੰਦ ਨਾ ਰਾਖਿਓ ਜੁੱਤੀ ਕਹੀ, ਮਾਹੀ ਮਾਗਤ ਤੈ ਲੋ ਬਾਹੇ, निर्दया नहीं जो तू जाला बूनत बूढ़े सर्व जंजाला बेकरे हो चिंता भू खदुआ जूठो खेल खेले बूनत हुआ अंतर का ज्ञान चिंता भू जा रे बिन कर्मा कैसे उतरस पा रे मुंद्रा फटक बनाई कान कान मुकद नहीं विद्या विज्ञान जीवा जीवा इंद्री पशु पे नहीं मिटे निशाना त्रिविध लोगा त्रिविध जोगा शब्द विचारे अचूकत सोगा उज्जल साच तू शब्द होई जोगी जगत विचारे सोही तुझ पहने उन्हें तू करने जोग थाप थाप से उठापे करे सुहोग जत संयम सच नानक जोगी त्रिभुवन मीत रामकनी महला पहला खटमट दहेज मन बेरागी सुरत शब्द तू नंतर जागी वाजे अनहद मेरे मन लीना गुरु बचनी सतनाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाइय गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम समाये राहु माया मोह विवार विवरज समावे सदगुरु बैठे मेरे मिलावे नाम रतन निर्मूलक हीरा चित राता मेरे मन तीरा हूँ मैं ममता रोग न लागे राम भगत जम कापो पागे जम जंजार न लागे मोहि निर्मल नाम हृदय हर सोई शब्द विचार पहे निरंकारी गुरमुख सागे गुरमुख परहारी अंदिन जाग रहे लिबिलाही जीवन मुखत अंजात अंतर पाई अल्पत गुफा में रेहु निरारे तस्कर पंच शब्द चंगारे परगर जाए न मनो डोले सहज निरंतर रेहो समावे गुरमुख जाग रहे अवदाता सदवेरा की सुत परोता जद सूता मर आवे आवे जाई बिन गुर शब्द न सूझी पाई अंधन सूझी पाई अनहद शब्द बजे दिन राति अवगत की जत मूर्ख जाती क्यों जानी का शब्द पजानी एको रब रया निर्वाणी सुंदर समाज सहज मन राता तज हो लोका सब लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजे मेट समानिया राम कली मल्ला पहला महागन महागन हो न करे हो विचार साहे ऊपर एकनकार जिस गुरु मिले सोई बिद जाने गुरमत होए तो हुक्म पचाने झूठ न बोलो सुनावे तत न चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होए कतनी बदो न सगली चार नावो तो वो पूजो मैल मैल फैला बिन हर राते मेलो मेला गर्भ निवार मिले प्रभु सारक मुकत प्राण जप हर किर तारे वाजे वाद न वेद बिचारे आप रूप क्यों पुत्रा तारे कट कट परम की नहीं जन कोई सगुर मिले तो सोझी होई जन तो जनिए सहजा सहसा दुख जिये गुरु की शरण पवे सुख जिये कोट कर अपराध शरण हम आया गुर हर पेटे पूरब कमाया गुर शरण न आवे भ्रम न पाइये परम फलाइये जन्म मराइये जमदर बाध्यो मरे बिकार नारिदे नामना शब्द प्रचार एक पांडे बंदी समर कहावे दुबिदा राते महल न पावे जिस गुर प्रसादी नाम पार कोट म देखो जन पार एक बुरा बला सचेक बुझ ज्ञानी सतगुर की टेके गुरमुख बिरली एको जानिया आवन जाना मेट समानिया जिनके विदय अहंकार जिनके हृदय एकनकार सर्व गुणी साजा विचार गुर के पाने कर्म कमावे नानक साचे साथ समावे राम कली मल्ला पहला हठ निग्रह कर काइये चीजे वर्त तपन कर मन नहीं दीजे राम नाम सर अवर्ण पूजे गुर सेवे माना हर जन संग कीजे जन जनदार जो ही नहीं साके सरपन दस ना सके हर का रस दीजे राह वाद पड़े रागी जग पीजे त्रै गुण भिक्षा जन्म मरीजे राम नाम बिन दुख सहीजे चारस पवन सिंहासन बीजे नी उल्ली करम खट करम करीजे राम नाम बिन वृथा सस लीजे अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजे अंतर चोर नहीं क्यों साध लहीजे गुरमुख होए काया कर लीजे अंतर मेल तीरथ पर मीजे मन नहीं सोचा किया सोच करीजे किरत पाया दोष का क्यों क्या क्यों दीजे अन ना खाई देहे दुख दीजे बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं कीजे मनमुख जन्मे जन्म मरीजे सतगुरु पंच पूछ संगत जन कीजे मन हर राचे नहीं जन्म मरीजे राम नाम बिन क्या कर्म कीजे राम कनी महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही सो प्रत्यय हुई जुगो जुगंतर सहायक सत सोई उत्पुत पर लगो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीरा जिन जपया तिन ही सुख पाया हर के नाम न लगे जमतीर राहु नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहेब अमर तोल जीवा सूची साचा बोल कर साचा ना ही रोल नेक बिन एक बन मह बेसो दूगर स्थान नाम बसो नाम विस्तार पछो अभिमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पावे दुर्गो मान हट अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े लै लोक सुनावे तीरथ परमस्त व्यापना भी आध न जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंदु कीवे न राही मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बादो लहे सजाई बिना वेजो जल थल जाई सिद्ध साधक के ते मन देवा हट निग्रह न तृप्त आवे पेवा शब्द विचार गहे गुरु सेवा मंत्र निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सचना तब तुम सब नागत रहे सुबह तुम के उपजो भक्ति पाओ जब जपो गुरमुख नाओ हूँ में गर्भ जाए मन पीजे छूट न पावस पाखंड की ने बिन गुर शब्द नहीं कर बात नानक गुरमुख तत्व विचार रामकली मल्ला पहला ज्यो आया त्यों जामो बहुरे ज्यो जन्मे त्यों मरण पाया ज्यो रस भोग किया ते ये ते तंग दुख लागे नाम विसार पग जल पाया तन तन देखत गर्भ गाया कनी कनिक कामनी सिंह हेत बुझाई की नाम विसारया परम गाया रहा जब तक संयम शील न राख्या पेट प्रेत पिंजर में कास्त पाया पुन दान स्नान न संयम सात संगत बिन बाद जाया लालच लागे नाम विसारे आवर जाओ जन्म गाया जाजम पाया केस गहे मारे स्मृत सुरत नहीं मुख काल गाइये अहिनाश इंदा अनाश निंदा तात पर पराई हृदय नाम न सर्वदाया बिन गुरु शब्द न गतपत पावो राम नाम बिन नरक राया गया पसारी मोह माया के मगन पाया करो विकार विकार खनेरे सुरत शब्द बिन परम पाया होमे हो रोग महा दुख लागा गुरमुख लोवे रोग राया सुख संपन्न क्यों आवत देखे साकर मन अभिमान पाया जिनका है तन तन सो फिर लेवे अंतर कैसा दुख पाया अंतकाल की साख न चाले जो दिसे सब रस माही आज पूरक अपरंपार सुप्रभर नाम विदेले पार पाया सुनो क्यों रोवे जिसे सुनावे पेशा कर असराइल पाया देख तो तुम माया गृह मंदिर साखत जंजाल पर आल पाया जा आए ता चिन्ह पठाए चाल जाले तीने बुलो लाया जो किच करना सु कर रहा बक्षन हारे बक्ष लाया जिन्हें सिखिया राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया विकसित बुद्ध ज्ञान गुरु के पाया मुकट पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरक शोक से बिरकत जा पाइये आप मार गुरमुख हर पाहे नानक सहज समाये लाइया रामकली दखनी महला पहला जत सत्य संयम साच लड़ाया सात शब्द रस लीना मेरा गुरु दयाल सदा रंग लीना अहनास रहे एक लिव लागे साचे देख बदीना रहाव रहे गगनपुर दृष्ट संसार समय सर अनहत शब्द संरंगीना सत बंद कुपिन पर पूर लीना जीवे रंग रसीना मिले गुर साचे दिन पूरू चराते कीरत विचार सीना एक मह सरब सरब मह का एह सत गुरु देख सब दिखाई जिनके अखंड मंडल पर मंदा शोक पर लखन न जाए दीपक दे दीपक प्रकाशया त्रिभुवन ज्योत दिखाई सच्चे तक सच महली बैठे निर्भो ताड़ी लाई मोह गया वैरागी जोगी कटकट यूड़ी वाही नानक शरण प्रभु की झूठे सतगुर सत सखाई रामकली महला पहला अवहट हस्त मरी गुर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत राह ममता मार हमे सुखे त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने मह राखे सदगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अन्नाध अनाहद बाजे कटकट जोट तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राख्या ब्रह्म गण पर जारी पंच तत् मिले अहनास दीपक निर्मल ज्योत अपारी रव सस्त लौके ऐतन किंगूरे वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन उद अलक अगम अपारी काया नगरी ऐमन राजा पंच बसो विचारी शब्द वेद आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे क्यों कहे कह बोपुर जीवत मुआ
2: मन मारी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे करता कारी, काया शोध करे भवसागर आत्मगत विचारी। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, अंतर शब्द रया गुणकारी। आपे में लहे गुण रहता हूँ मैं कृष्ण, कृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथ सुवरते। यह भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्द राता। यह करनी सारी वेद बाद न पाखन उखंड अहुद गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जोग कुमावे अवधे जतगत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे अवधुद जोग जुगत विचारी। माया मोह पवजल है शब्द अवधु शब्द करे कुलकारी, शब्द सूर जुग चारे अवखद वाणी भगत विचारी। एह मन माया मोहया अवगद, एमन माया मोहिया अवगद अहुदु निक्षे शब्द विचारी। आपे बक्से मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी, राम कली मल्ला तीजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद शरमे दिया मुद्रा कनी पाई, जोगी पिंछा कार तु दाया। आवन जान विभूत लाही, जोगी तातन पवन जिन लाया। ऐसी किंगूरी उजाहे जोगी, जित किंगूरी अनहद वाजे हर स्यो रहे दिवलाई। रहाओ सत संतोख पत कर चोली, जोगी अमृत नाम पकड़ पाई। ज्ञान का कर दंडा जोगी, सिंह सत बुझाए मन में ब्रेड कर आसन वैसे। जोगी ताते रे कल्पना कल्पना जाई, काया नगरी महामंगावे माया काया नगरी महमंगन चढ़िया। जोगी ता नाम पले पाई, एक किंगूरी ध्यान न लागे। जोगी ना सच पले पाई, एक किंगूरी शांत न आवे। जोगी अभिमान ना विच हो जाए, बहु बहु दुई पतला ही। जोगी है शरीर कर दंडी, गुरमुख होवे ता संतंती वाज। मृद कृष्णा हंडी हुकम बुझे, तो जोगी कहिए एक सियोचित लावे। सहसा दुखे निर्मन होए, जोग जुगत एह पावे। नगरी आपदा सप्त चुन से हर से पीछित लाई। सतगुरु नाम तेरी पावनी लागे, तहे सोजी पाई। ऐह जोग न होवे जोगी जी कुट।

रवे समाई राम करी महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरमुख देहे विदियाई रहा सूत सच रहे हो सदा सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचे हो जा विचे जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसके उपजे तिसने बिन से अंते नाम सुखाई सदा हजूर दूर न देखे रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे स्यों लिव लाई सात संगत में नाम निर्मोलक वडे पाक पर जाई परम न पूले सतगुर सेव मन राख्यो इथाई बिना वे सब पूली फिर दी बिथा जन्म गवाई जो कि जुगत गावे फंडे खंड जोग न पाई शिव नगरी में आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाही तातर बाजी शब्द निवारे नाम से मनाही ए शरीर सरवर हो ऐसन तो करे लिवलाई नाम विस्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई तय गुरु ने चेत नाम चेत है नाही बिना वे बिनस जाही ब्रह्मा विष्णु महेश तय मूर्त त्रिगुण परम पुलाई गुरु प्रसादी त्रिकूटि छूटे चौखदे पद लिवलाई पंडित पदो पर वाद बखान तिन्ना पूज न पाई विख्या माते परम पुला पुलावे उपदेश करे हो किस पाई भगत जना की उत्तम वाणी जग जग रही समाई वाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाही काया नगरी शब्दो खोजो नाम नव निध पाई मन समार मन सहज समाना बिन रसना उत्त कराई लोहिन देख रहे विसमाधि चित अदिष्ट लाई अधिदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हव गुरु सलाही सदा अपना जिन साची बूझ पुजाई नानक एक कहे बेंती ना वो गटपत जाह पाही राम करी मल्ला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कर कहना कुछ न जाही संतो गुरमुख पूरा पाही नामो पूज कराई राहो हर बिन सब किस मैला संतो क्या हो पूज चराई हर साचे पावे सा पूजा हो बाना मन वसाई पूजा करे सब लोग संत हो गुरु मनमुख खाए न पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा खाई पाई पतित पावन से जन साचे एक शब्द बिलाई बिन नावे हो पूज न हो गए परम पुली पुकार लोकाई गुरुमुख आप पछाने संतो राम नाम ले बुलाई आपने निर्मल पूजा कराई गुरु सब्जी खाई पाई पूजा करो पर विद नहीं जाने दूजे पाही मल लाई गुरमुख है वे सुपूजा जाने पारा मन बसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सिखाई अपना आपना पहचानियो संतो कूड़ी कूड़े करे बड़ी आई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पहचान गत मत किन ही पाई ए मनुआ सुन सुन नाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम बखान सत्संगत मिलाई गुरमुख ला गुरमुख गावे आप गवावे जर साचे शोभा पाई साची वाणी सच बखाने सच निर्मल पाप निकंजन मेरा प्रबंत सखाई सब किसे आपे आप वरते नानक नाम बढ़ियाई राम कली मल्ला तीजा हम कुचुल कुचुलत अभिमानी अभिमानी मिल सब दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी साचा नाम वसया कट अंतर करते पाप सवारी रहो पारस पर से फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा दारी एक बेख करे फिरे अभिमानी दिन तिन जुए बाजी हारी एक अंगिन भगत करे दिन राती राम नाम उत पारी अंदिन राते सहजे माते सहजे हुमे मारी चै बिन भगत न होए तब ही पे पाही भगत सवारी माया मोह सब जलायो ध्यान करत बिचारी आपे आप कर्म आपे आप कराए करता आपे बक्स भंडारी तिसक्या गुन्ना का अंत न पाइया हऊ गावा शब्द बिचारी हर ज्यो जपी हर ज्यो सलाहे विचे आप निवारी नाम पदारस जुड़ के पाया अखट फे भंडारी अपना वक्त नो आपे टूटा अपनी कृपा कर कल तारी दिन साचे नाम की सदा पुख लागी गावन शब्द बिचारी जो पिन सब किस है तिसका आखन बिकम बिचारी शब्द लगे से जन निस्तरे बहुजल पार उतारी बिन हर साचे तो पार न पावे बूझो को विचारी जो तुर लिखिया सो ही पाइये मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाम प्यारी काया अमृत रही भरपूरे पाया शब्द विचारी जो
शब्द विचारी जो प्रभु खोजो सो ही पावे हो।

0: होर फूंट मुए अहंकारी बादर बिंस बादी बिंसो सेवत सेवे गुर पछानता जिसनो कृपा तुम्हारी सत्संगत सतगुर न सेवे माया लागे तूप मुए अहंकारी जिनचुर अंदर मास तिचुर टीचुर टीचर सेवा कीचे जाही मिलिया राम मुरारी अंधन जागत रहे तिन राती अपना प्रीत पीत प्यारी तन मन मारी वार कुमाही अपने गुर बिटहु बलिहारी माया मोह बिनस जाईगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए सो ही जागे गुर के शब्द विचारी नानक सही मुए जी ताम है ने नाम न चेते भगत जी में विचारी राम करी मल्ला तीजा नाम खजाना गुर से पाया तृप्त रहे अधाई संतो गुरमुख मुगत गत पाई एक नाम वस्या कर अंतर पूरे की बड़ी आई रहो आपे करता आपे भुगता देदा रिजित सबाई जो कुछ करना सुख कर रहे अवर न करना जाय आपे साजे श्रेष्ठ उपाय वे सिर सिर अंधे लाई जिस स्वयवर ता सुख पायो सदगुरु मेरे मिलाई अपना आप उपाय पे अलसन लखना जाय आपे मार जीवाले आपे तिस्नो दिल ना कमाही इदाते एक मंगते कीते आपे पगत कराही सेवड़ पागे जिने क्या जाता सूच रहे समय आप स्वरूप सियाना आपे कीमत गहन न जाय आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाही वड्डा दाता गुरमुख जाता निग उरे निग गुरी अंध फिरे लोकाई जिन चख्या जिना सदा आया सदगुरु बूझ बिछाई एक ना नावो आप बुलावो एक ना गुरमुख देह बुझाई सदा सदा सलाहे संतो तिसकी बड़ी बड़ी आई तिस बिन अवर ना कोई तिसनु प्राणी सदा तिहावे जह गुरमुख बनत बनाई सदगुरु बैठे से जन सीजे तो जिस हृदय नाम बसाई सच्चा आप सदा है सच्चा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेखे रया विस्माद मेरा प्रभ रया सर्व थाई राम कली मल्ला पंजवा अष्टपति एकों का सतगुर प्रसाद किन्हों किया परवार पसारा किन्हों किया पूजा विसारा किन्हों नेवर पौंगंगम साधे क्यों दिन मोदिन हर हरा राधे तेरा भरोसा प्यारे आना जाना आना बेसारा हाव किन्हीं है ग्रह तज वन खंड पाया किन्हों मोन खुद सदाया होकर कोई कहते हैं अंदिन पग उती मोह दिन हर हर उठ लीती किन्हीं कया हूँ तीर्थवासी कोई अन्न तज पाया उदासी तिन पवन सु धरती करया मोह दिन हर हर हर हर मोह दिन हर हर दर परया किन्हों कया मैं कुलो बुढ़ियाई किन्हीं काया वो बहम बहाई कोई कहे मैं तनो पसारा मोह दीप दे हर हर उधारा तिन्हों कुगर निरत कराई किन्हों वरत नाम मेला पाई माला पाई किन्हों तिलक गोपी चंदन लाया मोह दिन हर हर तर त्याया किन्हों सिद्ध बहु चेतक लाए किन्हों वेद कहू बहु घाट बनाए किन्हों तंतीम है किन्हों तंत मंत बहु खेवा मोह दिन हर हर हर सेवा क्यों चतुर कहावे पंडित तो खट कर्म सहायत स्यों मंडत कोई करे आचार सुखरनी मोह दीन हर हर सरनी सगले करम करम दुख सोते पिन आवे तिरवन्ना प्रबोधे जो नानक जो साध संग पाया पूजी कृष्णा महान मिश्रित लाया राम कली मल्ला पंडमा इस पानी से जिंतु करया माटी खा लय जहूरा करया उकत जोत ले मूरत सूरत पर किया मात गर्भ में जिंतु राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ विचार मना रहा तिस दिए तो आप बेतार जिंदियो प्रात पुत हारी जिन दिए तुद विनीता अरमीता तिस्ता कुर दया बनाना तिस्ता कुर की रहुमन चरना छिटे अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान थे वादन कव की ये वसुधा देव बर्तन बनना तिस्ता कुर के चित्त रख चरना पेखन क्यों नेत्र सुनो क्यों करना हसत कमावन वासन रसना चरण चरण चरण चलन क्यों सिर कीनो मेरा मन किसके पर तिस ठाकुर के पूजो मेरा अपवित्र पवित्र जिन पू करया सगल जोन में तू सिर तरया अब तू सीज पावे नहीं सीजे गुरमुख नहीं सीजे कर सवेरे मन प्रतीजे यहाँ वहाँ एक जतगत देखियो तत्कत हुई तिसे वत मन आलस करे जिस विसरे एक निमख ना सरे हम अपराधी निर्गुण हारे ना कित सेवा ना कर मारे गुरु ਗੁਰ ਗੋਹਿਤ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਦਰਿਆ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਮਹਾਂਬਾਪ ਪੂਤ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਮਿਰਖ ਵਪਾਰਾ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾਰਾ ਰਚਨਾ ਸਾਧ ਜਨੀ ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਨੀ ਸਪਕਾ ਏਕ ਤਨੀ ਰਾਹੋ ਸਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਬੇਦਰ ਬਾਦ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਲਪ ਸੰਗ ਨਾਰੀ ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਖੇਲਤ ਜੂਆ ਕਹੂੰ ਬਿਕਾਵੇ ਅਸਲੀ ਹੂਆ ਕਹੂੰ ਬਿਕਾਵੇ ਬਿਹਾਵੇ ਪਰ ਦਰਬ ਚੁਰਾਵੇ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਹਾਵੇ ਨਾਮ ਤਿਹਾਵੇ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕਾਵੇ ਕਾਵੋ ਰੋਗ ਸੋਧ ਪਰਮੀਜਾ ਕਹੂੰ ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਤਾਰ ਜਪ ਬਿਹਾਵੇ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਚਾਲਤ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਸੋਪਰੀ ਮਾਲਤ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਨਤ ਨਾਤਿਕ ਨਰਤੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਜਿਆ ਐ ਰਿਤੇ ਹਿਰਤੇ ਕਹੂੰ ਬਿਹਾਵੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਡਰਤੇ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੇ ਸੋਚ ਜੀਵਤ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਹਰਸ ਪੀਵਤ ਸੋ ਲਿਆ ਪਿੱਛੀ ਲਗਾਣਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲਬਲ ਜਾਓ ਰਾਮ ਗਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਵਾਂ ਗਿਆਨ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਰਤ ਸਿਮਰਤ ਜਾਈ ਤੈਸੇ ਦੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੇ ਹਰ ਰਾਏ ਕੇ ਐਸੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆ ਜਬ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਰਹੋ ਜਲ ਪੀਵਤ ਜੋ ਤੀਖਾ ਮਿਟੰਤ ਪਰ ਵਿਕਸੇ ਗਾਵ ਗ੍ਰਿਓ ਆਵੰਤ ਕੰਤ ਲੋਭੀ ਕਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਲਖਵਾਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾਇਆ ਜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਲ ਜਾਹੀ ਤਿੰਨੀ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਲਾਈ ਜਿਉ ਦੂਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਗੂੰਗਾ ਪਟਾ ਚਰਾਵੇ ਬਹੁ ਛੰਦ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਰ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਗਲ ਪਾਰ ਸਿਉਂ ਪਾਵਕ ਸੰਗ ਸੀਤ ਨਾਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਸਤਸੰਗ ਵਿਨਾਸ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਿਉਂ ਸਾਬੁਨ ਕਾਪਰ ਉਜਲ ਹੋਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਪ੍ਰਮਤ ਖੋਤ ਜਿਉਂ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ ਜਿਉਂ ਚਾਤਰੀ ਬੂੰਦ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ ਨਾਮ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਮਨੋ ਸੁਖਾਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਲਾਗੀ ਵਰੀਤ ਦਿਆਲ ਵਹੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਚੀਤ ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਨ ਤਿੰਨ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ ਸਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਲੋਹੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਮਪੇ ਛੂਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਪੇਖਿਓ ਹਰ ਸਗਨ ਤੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਨਾ ਅਹਿਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰਨਾ ਰਹੋ ਹਿੰਮੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੂਠਾ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਧਾਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ ਆਵੇ ਆਗੇ ਸਭਨਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਪਣ ਕਿਆ ਪਾਲਣਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਕੋਟ ਜਨ ਉੱਪਰ ਨਾਨਕ ਬੋਵੇਂ ਵਾਰਨਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਪਤੀ ਏਕੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸਿਓ ਹਰਸਿਓ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਖਦਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਵੇ ਅੰਤ ਫੇਰ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੇਰਾ ਬਣਾ ਸੰਤ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ ਪਰ ਪਾਵਨ ਕਿਆ ਬਿਨ ਕੀਏ ਤਿੰਨ ਪੀਤਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਬਿਹਾਨੀ ਕਵਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਦਾਈ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਨ ਕਮਲ ਜਿਲਾਵੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ ਅੰਧ ਕੂਪ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਢਿਓ ਸਾਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਹਿਸਾ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ ਢਾਈ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅਹਿਮਨ ਰਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀ ਚਿਪਤਾਈ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਕੀਰਨ ਗਾਇਓ ਨਹਿਚਲ ਵਸਾਈ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰੀ ਮਦਦੀਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਣ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈ ਦਾਲ ਕਲ ਕਾਲ ਸਿਆਨਪ ਉਤਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਮਾਈ ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਸੂਚ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ਪੁੱਤਰ कलत्र पुत्र कलत्र महाभिक्षा मह गुर साचे लहे तराई अपन आपने जीजा आप संभाले आप लिए लड़लाई साज तरम का बेड़ा बांधिया पवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बलबल जाई अकाल मूरत जूनी संभ्यो कल अंधकार दिपाए अंतर जामी दीन का दाता देखत तृप्त अघाए एकन काल निरंजन निर्भो सब जल थल रया समाना भगत दान पक्का क्यों दीना हर नानक जाते सारे माने राम को मल्ला पंजमा मंथन राता रा, प्यारे हर प्रेम भगत बनी आही संतोष सतगुर पेख निभाए हर नाम रहा दास क्यों किया दी क्यों दिया सक राही संतो रहो खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कह न जाई संतो चरण कमल चु लागो त्याना साचे दरस समाई साचे दरस समाही संतो गुण गावत गावत भय निहाला हर सिमरत पुत्र खाव संतो आत्म राम रवैया सब अंतर तथा विपत जाई संतो आद जुगाद है भी होती सब जिया का सुख दाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर्व रया सब थाई संतो मित साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली मल्ला पंजवा मन वच क्रम राम नाम चितारी कुमन केर महात बिखरी बिखर गड़ी गुरमुख नानक पले उतार गुरुमुख नानक पार उतारी राहु अंतर सूखा बाहर सूखा हर जब मरण पे दुस्तारी जिससे लागे तिनों निवारे प्रभु जी अपनी कृपा तारी उधरे संत परे घर सरनी पचबिन से महाकारी साधु संगत अहफल पाया इक केवल नाम दारी ना क्यों चूरू न कोई ही न सब प्रगति ज्योत तुम्हारी तुम समरत अगस्त गोचर रव्या एक मुरारी कीमत कहूँ तेरी करते प्रभु एक न पारावारी नाम दान नानक बढ़ियाई तेरिया संत जना रे नारी राम करी मल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज देती मन बुझिया बनाया राग तन परवार परया सबद गावन आया सबदोत गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होया सतगुरु में पाया हे मन मेरे या तू सदा रहो हर नाल रहे तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो कार्य तेरा कार्य सब सुवारना सुना गला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देवे सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मनुसाए नाम जिना के मन वसैबरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया कर शांत सुख बनाए वसिया जिन इच्छा सब जाइया सदा गवाई कृपा गुरु लिखियो जिस दिया ए वडियाइया कहीं नानक सुंदर स्वरूप प्यारो सकल नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द की कार सवादे शब्द वाजे कला की प्रकारिया पंच दूसरे काल कंठ संवारिया तूर कर्म पाया तुझ जिनके क्यों दूर कर्म पाया तो जिनके सिंह नाम हर के लागे कहीं नानक का सुख होया तुझे आनंद वाजे सच लिवे बिन देह निमानी लिवे बाजियो क्या करे बिचारी तुझ बाज मरत कोई नहीं कृपा कर बनवारी ए सियो होर था ना ही शब्द लाल सवारी कहीं नानक लिवे बाजो क्या करे बिचारी आनंद आनंद सबको कहो आनंद गुर के जाने आनंद सदा गुर के कृपा करे प्यारया कर कृपा विलवित कटे ज्ञान अंजन सारया अंधरो जिनका मोह टूटा जिनका शब्द सत्य सवारया कहे नानक ए आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबया जिसतु देहे सोई जन पावे पावे ता सो जन देही जिसनु हर क्या करो विचारया एक परम पुले फिरे जय दीसन एक नाम लाग सवारया गुर प्रसादी मन पाया निर्मल जिन पाना पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावो आवो संत प्यारे हो अथक की गत करे कहानी करो कहानी अथक केरी तित द्वारे पाइये तन मन तन सब सौपद सौप गुर क्यों हुक्म मनाए हुक्म मनिए पाइये हुक्म मनो गुर केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कहत अथक कहानी ए मन चंचला चतुराई किन्हें न पाया चतुराई न पाया किन्हें तू सुन मन मेरे अह माया सो मोहनी जिन एत परम पुलाया माया ता मोहनी कीनी किती जिन थर चूली पाया कुर्बान किता किसे बिते हो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारे तू सदा सत संभाले एक तुम तू जी देखदा चल चल चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं तितनाल क्यों चितलाइए ऐसा कम मुले न कीचे जित अंत पछताइए सतगुर का उपदेश सुन तू होए तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम वोचर तेरा अंत न पाया किन्ना किने तेरा अपना आप तू जाने है जी जन सब खेल तेरा किया के आँख बखाने आँखों का वेखे सब तू है जिन जगत उपाया कहीं नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुन मुनजन अमृत खोजंदे तू अमृत गुर के पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुरु पाए एक वेग प्रसन्न आया लोभ अहंकार चुका सतगुर पुरा पला पाया कहे नानक जिसनों आप टूटा ते अमृत गुर से पाया पगता की चाल निराली पक्षों केरी विषम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार से जिसना बहुत नहीं बोलना इनों की वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन आप वत जाया हर वासना सम्मानी कहे नानक चाल भगत जुग हो जग निराली ज्यो तू चले हो ते विचलाहे स्वामी होर क्या जाना गुर तेरे जिग तू चलाहे तिवें चलाया जिन मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाही है जी हर हर सदा तिहावे जिसनो कथा सुनावो अपनी सी गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब जी पावे तिवें चलावे ए सुहेला शब्द सुहावा सदा सुहेला सतगुर सुनाया ए तिन के मन वसया जिन तुरयो लिख्या लाया एक फिरे एक मेला करयो गला गली किने न पाया कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित्र होवे से जना जिन हर त्याया हर त्यावे पवित्र होवे गुरमुख जिन त्याया पतित माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सभाया कहते पवित्र सुंदे पवित्र से पवित्र जिन मन वसाया कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया गर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए न यह सहसा चित्ते संयम रहे कर्म कमावे सहसे ज्यों मलिन है कित संयम थोटा जाए मन तो वो शब्द लगाओ हर्ष्यो रहो चित लाए कहो नानक गुरु प्रसादी सहजे उपजे ऐ सहसा ऐ जाय जिमे मेले बारो निर्मल जीत जिहों ता मेले तिन जन्म जो है हारया एह तिसना वड़ा रोग लगा मरण मनहु विसारिया है वेदा में नाम उत्तम सो सुनी नाही फेदे है जीव बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जीवो निर्मल बाहर निर्मल बहुतर बाहरों का निर्मल जीव निर्मल सतगुर के करनी कामनी कूड़ की सोई पहुँचे नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिन खटिया पले से बन जा रे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहो गुरु नाले जेको सिख गुरु सेती मनमुख होवे ता मनमुख सिख कोए जीवो रहे गुरु नाले गुर के चरम विदे तिहावे अंतर आत्मे समाले आप छद सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए कहीं नाना सुनो संतोषो सिख मनमुख होए जेको गुर के वेमुख होए बिन सतगुर मुकत ना पावे मुकत ना होर थै कोई पछो विवेकिया जावे अनेक जुनी परम आवे बिन सतगुर मुकत ना पावे फिर मुकत पावे लाग चरनी सतगुर शब्द सुनावे कहे नानक विचार देखियो बिन सतगुर मुकत न पावे पाहे आहो सिख सतगुर के प्यारे हो गावो साची बाणी ते गावो गुर केरी पाणिया सिर बाणी जिनको नजर करम होवे हृदय तिना समानी पीहो अमृत सदा रहो हर रंग जपो सारंग पानी कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुर बिना ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਿਓ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਂਖ ਬਖਾਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੋ ਰਸਨਾ, ਕਰਿਓ ਰਸਨਾ ਕਹਾਇਆ ਕਹਾਇਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਤ ਜਿਨਕਾ ਹਰ ਲਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਵੇ ਰਵਾਨੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਿਓ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਓ ਪਾਓ ਲਾਇਆ ਪਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇਹ ਬੁਝਾਓ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਹੋ, ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ ਕਰਤੇ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਥੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਵੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੂਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰਬਾਜਿਓ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤਹਿ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ, ਸੂਤਾਂ ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਨੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਕਰੇ ਸੁਖਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਏਵਦ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਹੇ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਹੇ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਏਵਦ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਸਤਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਜਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਪਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਈਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ, ਉਪਜੇ ਪਾਹੁ ਦੂਜਾ ਲਾਈ ਲਾਇਆ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਨਾ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨ ਵਚ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਪਾਈਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੂਲਕ ਹੈ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਈ, ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਈ ਕਿਸੇ, ਵਿਚੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਾਈ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੋ, ਸਿਰ ਸਉ ਪੀਏ ਵਿਚੋ ਆਪ ਜਾਈ, ਜਿਸਕਾ ਜਿਉ ਤਿਸਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਈ, ਹਰ ਆਪ ਮੂਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾਕੇ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਨਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਨਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਰਸ ਜਾਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਜਪੋ ਜੀਵਾਂ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਤਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਇਆ ਵਨਜਾਰਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤੇ, ਚਿੰਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪਲੇ ਪੀਵੇ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਸਾਹ ਆਏ, ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੂੰਹ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਦ ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉਂ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਇਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਮ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਮਲ ਰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਖੀ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਿਉਂ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਾਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਵੋ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ, ਅਨਹਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਨੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਪੋਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਜਿਨਹਰ ਤੇਰੇ रचन रचिया सोहर मन ना वसाया गुरु प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया कहे नानक है शरीर परवान होया जिन सदगुरु सिंह चित लाया ए नेत्रियो मोरियो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवर ना देखन कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नजरी घर निहालिया एव संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नजरी आया गुर प्रसादी बूझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई ए सवरण मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए शरीर लाहे सुनो सतबानी जित सुनी मन तन हरिया होए रसना रस समानी सच अलख विडानी ताकि गत कहीं न जाए कहीं नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होए साचे सुनो नो पठाए हर ज्यो गुफा अंदर राख के वाजा पवन बजाया वाजा पवन नव द्वारे प्रगत क्यों दसुआ गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवां द्वारा द्वारु दिखिया तह अनेक रूप नाव नवनिध तिसका अंत न जाय पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख ले वाजा पवन बजाया ए साचा सुहेला साचे कर गावो गावो ता सुहेला कर साचे जिथे सदा सच तिहावीए सचो तिहावीए जातुद पावो गुरमुख बिना बुझावे ऐसा संबना का खसम है जिस भक्त सोजन पावे कहे नानक सच सुहेला सच्चे कर गावे अनंत सुनो गुरपागी हो सगल मनोरथ पूरे पाग ब्रह्म प्रभाए उतरे सगल पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संसाजन पे सबसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रेहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सद एक का सतगुर प्रसाद जब दाता सोई भगत बुछड़े पै लोही जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने को ही जियो अवरो न जाने शब्द गुर के एक नाम पिहावे प्रसाद नानक गुर अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन हारा हर नाम समाया जग अमर अटोल तोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर बाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सदगुर करे हर पह बेनती मेरी पेज रखो अरदास जियो पेज रखो हर जनो केरी हर दे नाम निरंजनो अंत चल दिया होई बोली जमदूत काल निखंजनो सतगुर की बेनती पाए हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलावा तन तन कहे साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत्र पाइयो मेरे हर बाणा आवो मैं पास जियो हर बाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरत सोही जिस हर प्रभ पाना पावे आनंद अनहद वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो तुर लिखिया परवारा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाने आपने परवार सदाया मत में पीछे को ही रोग सी सो मैं मूल न पाहिया मित पेंजे मित बिकसे जिस मित की पैज पहावे तुसी विचार देखियो पत पाही हर सतगुर पे नावे सतगुर पर तक हो दे भय राज आप टिकाया सब सिख बंदम पुत पाही रामदास पेरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पीछे कीर्तन करहो निर्वाण जियो कैसे गोपाल पंडित साधियो हर हर कथा पढ़ो पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पतल करिया दीवा फल हर सार पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरक सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरुष जी बोलिया गुर सिखा मन लय जाए जियो, मोड़ी पत मनमुख होइया रामदास पैरी पाहे जियो। सब पवे पैरी सतगुर केरी, जिथे गुर आप रखाइया आप रखिया, कोई कर बखील ही नीवे नहीं फिर सतगुर आन निवाया। हर गुरु पाना दिए बलियाई, तुर लिखिया लेख रजाहे जियो, कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाई जियो। रामचरित मल्ला पंजवा छंद एक छुपा सतगुर प्रसाद, साजनला मेरा साजनला निकट कलोरिया मेरे साजना साजन अला साजन अला, जानी अड़ा हर जानरा नैन अलो एरा, हर जानी अड़ा नैन अलोया खटखट सोया, हर अत अमृत पुरी गूड़ा नाल हुवंदा, लह न संकंदा सुहाव सुहाव न जाने मूड़ा, माया मद माता होची बाता बिलन न जाई परम सड़ा, कहु नानक गुर बिन नाही सूझे हर साजन सबके निकट करा। गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण आधारा मेरे प्राण आधारा मेरे गोविंदा, कृपाला मेरे कृपाला दान दसारा मेरे कृपाला दान दसारा, अपर आपरा कटकट अंतर सोहना
1: एक दासी साजी सबल पसारी, नीजन सलै मोह मोहिया जितनो रखे तो सच पाखे। गुर का शब्द सोहना एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखे सो सच पाखे। गुर का शब्द विचारा कौ नानक जो प्रभ कहो पाणा, किसी को प्रभ प्यारा माणो प्रभ माणो मेरे प्रभ का माणो, जानो प्रभ जानो स्वामी सुगुण सजानो, सुगुण सजाना साध परदा नाम हर का नामा, चाख गाने छांग पाने जिनके भाग मसाना, तिन ही पाया तिने ते आया सगल तिसे का माणो, कौ नानक सिर तख्त निवासी सच तिसे दीवाणो। मंगला हर मंगला मेरे प्रभु के सुनिए मंगला, सोहे लड़ा प्रभ सोहे लड़ा नहाद तुनिए सोहे लड़ा नहाद वाजे शब्द गाजे, नित नित जिसे विधाई सो प्रभ त्याइए साव किच पाइए, मरे ना आवे जाई चुकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुण ने, कहो नानक का प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजमा हर हर त्याए मना खिन नामी सारिए, राम रामा राम रमा कंठ उर धारिए उतार, हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता, पाप हरता दुसे दुख पाप खंडनो जगदीसी जगव गोपाल माधव गुण गोविंद विचारिये, बिन मंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन ची तारिये, चन कमलदा जन का आसरा आसरा माल मिलत माल मिलख भंडार, नाम अनंत तरा नाम नर हर निदान जिनके रस भोग एक नारायण, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायण, किल बिख का हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने, देख चलत दयाल सुन भगत विखानी, जी जन सब तुझ त्यावे पुरख पत परमेसरा, सर्व जाच के एकदाता करना मैं जगदीसरा, साधु संत जान सोई जिसे प्रभ की प्रभ जी मानी, बिनवंत नान करो कृपा सोए तुझे पछाणी, मोहे निर्गुण नाथ सरणी आया बल बल बल बल बल गुरदेव, जिन नाम जिरड़ाया गुरनाम गुरनाम दिया कुशल किया, सर्व इच्छा पुनिया जलने बजाई, शांति आई मिले चिरी बेचन्या, आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया, राम कली महला पंजमा रुण चुनो शब्द अनाद, नित उठ गाइए संतन के किल विख सब दोख विनाशन, हर नाम जपिए ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਜੇ ਅਮਿਓ ਬੀਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਰਾਧੀਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਲੱਗ ਚੰਨ ਕਮਲੇ ਸਾਧੀਏ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਿਆਲ ਮੋਹਨ ਦੁੱਖ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਹਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਹਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗ।